कर्मयोग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपके अपनी आरजी याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 जुलाई महीने का गुरुवार दिन और तारीख है 2। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गैर अतः और तकनीकी अभियंता पीबी द्योरी।

चलिए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा आपको। 6:40 सुनिए कालो डायलेक्ट न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरा, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आपातने दैनिक न्यूज। 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम्स, जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन दैनिक न्यूज।

7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज। नौ बज के 5 मिनट रहेगा इंग्लिश न्यूज। 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी कपशप। जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड, जहां बजे

0: और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मेक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanae Takaichi, in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ, दिल को

तो दोस्तों ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव स्टार्ट शुरुआत दी होगी। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे कालो श्रोताओं का कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अपना पसंदीदा कार्यक्रम अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी दोस्त और आरजे याजू, लेकर हाजिर हूं एक और नई सुबह, नए जज्बे और ढेर सारी खुशियों के साथ। अभी अभी आपने सुना गालो डायलेक्ट में समाचार, और अब शुरुआत करते हैं एक नई सुबह की एक नई सोच के साथ। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सुबह के कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, सुबह का ये समय होता है नई ऊर्जा, नई सोच और एक फ्रेश शुरुआत का, और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए सेहत, योगा, एक्सरसाइज टिप्स और कुछ मधुर संगीत है। तो बने रहिए हमारे साथ कुछ मिनटों तक। दोस्तों, सुबह का समय सिर्फ उठने का नहीं होता, ये होता है खुद से मिलने का, थोड़ा सा अपना शरीर को समझने का, थोड़ा सा अपने मन को शांत करने का। और इसीलिए सुबह सवेरे में हम बात करते हैं योगा की, एक्सरसाइज की, हेल्थ टिप्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुबह की एक डीप ब्रेथ के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सांस की, क्योंकि सही सांस लेना ही सबसे बेसिक और पावरफुल एक्सरसाइज है। आप जहां भी हैं, चाहे कुर्सी पर या जमीन पर सीधे बैठ जाए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए। अब धीरे से 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए

दरअसल सिंपल एक्सरसाइज को हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग या प्राणायामा। ये आपके लंग्स को स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेस कम करता है और माइंड को काम करता है। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम की। इसमें आप एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं। ये बॉडी के एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर आप बिगनर हैं तो सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे इसे 10 या 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार पर। ये एक कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है। इसमें 12 स्टेप्स होते हैं जिसमें स्ट्रेच भी है, स्ट्रेंथ भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर आप रोज 5 से 10 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो आपको अलग से जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात रखिए, योगा कभी जल्द में नहीं करना चाहिए, हर मूवमेंट को फील कीजिए। चलिए अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और सुनते हैं एक फ्रेश और सूदिंग सुबह का गीत।

स्वागत है आपका फिर से सुबह सवेरे में। दोस्तों, योगा के साथ साथ मूवमेंट भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप जिम जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जा पाते तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है वॉकिंग। रोज सुबह 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए और वेट कंट्रोल के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप थोड़ा और एक्टिव होना चाहते हैं तो घर पर ही कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे स्क्वाट्स जो आपके लेग स्ट्रांग बनाते हैं, पुशअप्स जो चेस्ट और आर्म्स के लिए बेस्ट है, और प्लैंक जो आपके कोर को स्ट्रांग करता है। शुरू में 5 से 10 रिपीटेशन से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, वार्म अप। कभी भी डायरेक्टली हैवी एक्सरसाइज शुरू मत कीजिए। 5 मिनट का वार्म अप इंजुरीज से बचाता है, और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए, यह मसल्स पेन को कम करता है। सबसे जरूरी बात कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा थोड़ा करना, कभी कभी ज्यादा करने से बेहतर है।

और दोस्तों जब आप अपनी बॉडी को इतना प्यार देंगे तो थोड़ा से अपने मन के लिए भी निकालना जरूरी है। तो चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखते हुए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्दी रहना मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना, लेकिन असल में हेल्थ एक कॉम्बिनेशन है, सही खाना, सही आदतें और सही सोच। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की रूटीन की। आप सुबह उठते ही क्या करते हैं, ये आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। कोशिश कीजिए कि उठते ही तुरंत मोबाइल ना उठाएं, 5 से 10 मिनट अपने लिए रखिए, हल्का सा स्ट्रेच कीजिए या बस शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं पानी की। रात भर के बाद बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेटेड होती है, इसीलिए सुबह उठकर एक ग्लास हल्का गर्म पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट पर, जो दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील माना जाता है, लेकिन ब्रेकफास्ट हैवी नहीं, बैलेंस होना चाहिए। आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं जैसे फ्रूट्स, ओट्स, पोहा, उपमा, बॉयल्ड एग्स या स्प्राउट्स। ये आपको एनर्जी देते हैं बिना हैवी फील कराए। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, ओवर हीटिंग से बचना। कभी कभी हम जल्दी जल्दी में या टीवी देखते हुए ज्यादा खा लेते हैं। कोशिश कीजिए धीरे धीरे खाने की और अपने खाने को एंजॉय करने की। अब थोड़ी सी बात मेंटल हेल्थ की। आज की बिजी लाइफ में स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लेकिन उससे मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। रोज के रूटीन में 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, हल्का म्यूजिक सुनना हो या बस नेचर को देखना हो। एक छोटी सी आदत जो आप ट्राई कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड। सुबह उठकर 2 से 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल है, यह आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है। और हाँ, नींद स्लीप को इग्नोर मत कीजिए दोस्तों। अगर आप 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद नहीं लेते तो बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं करती। लेट नाइट मोबाइल यूज कम कीजिए दोस्तों, और सोने से पहले हल्का सा माइंड रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब परफेक्ट नहीं होता है, मतलब होता है रोज थोड़ा बेहतर बनना। छोटी छोटी आदतें जैसे ज्यादा पानी पीना, थोड़ा चलना, फ्रेश खाना खाना और पॉजिटिव रहना, ये सब मिलकर आपकी लाइफ में थोड़ा बदलाव लाती है। तो आज एक छोटी सी आदत जरूर शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपनी लाइफ को हेल्दी और खुशनुमा बनाइए। चलिए दोस्तों, इसी हेल्दी और पॉजिटिव सोच के साथ अब वक्त हो गया है आज के तीसरा और आखिरी गीत का।

दोस्तों, हर सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी होती है खुद को बेटर बनाने की। आज अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी अपने हेल्थ के लिए निकालते हैं तो कल आप खुद डिफरेंस महसूस करेंगे। छोटी छोटी आदतें जैसे जल्दी उठना, योगा करना, अच्छा खाना, यही मिलकर एक हेल्दी लाइफ बनाती है। दोस्तों, इसी के साथ अब इजाजत लेने का समय आ गया है। उम्मीद है कि सुबह सवेरे का ये सफर आपको पसंद आया होगा और आप अपनी सुबह को और भी हेल्दी और खुशनुमा बना पाएंगे। याद रखिए, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव लाती है। आकाशवाणी ईटानगर का 103.1 MHz है, जहां होती है।

0: से दिल की बात अब आप सुन पाएंगे अब पता नहीं डायलॉग में न्यूज।
1: आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए आप सुनते हैं आप पता नहीं कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अपतानी भाषा में समाचार। अब वक्त हो गया है सुबह की ताजी धूप के साथ आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाने का। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल अरुणाचल, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजी याजू और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। क्या आपने अपनी गरम गरम चाय का पहला घूंट लिया है? अगर नहीं तो उठाइए कप और मेरे साथ तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए। अगले कुछ मिनटों में हम दुनिया और भारत के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और हाँ, हमारे स्टेट के सबसे बड़े न्यूज़पेपर द अरुणाचल टाइम्स की उन बड़ी खबरों पर भी गहरी नजर डालेंगे जो आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए, एंटरटेनमेंट और नॉलेज का ये जबरदस्त कैप्सूल शुरू होने जा रहा है राइट हियर राइट नाउ। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल हिस्ट्री में आज का दिन क्यों याद किया जाता है।

दोस्तों आज के दिन 1776 में अमेरिका के कंटिनेंटल कांग्रेस ने ब्रिटिश से अलग होने का फैसला लेते हुए लीगल सेपरेशन कोड पास किया था, जिसे उनकी आजादी की नींव रखी। मशहूर महिला पायलट एमिलिया एयरहार्ट और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनान दुनिया का चक्कर लगा

इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक जंग के बाद आज ही के दिन 1972 में शिमला एग्रीमेंट पर साइन हुए थे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर हस्ताक्षर किए। देश की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज ही के दिन 1940 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में अरेस्ट किया था। जेल और नजरबंदी से भागते हुए नेताजी आज ही के दिन 1943 में सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। इंडियन नेवी का पहला बड़ा क्रूशल शिप INS दिल्ली आज ही के दिन 1948 में ऑफिशियली इंडियन नेवी की शान बना और देश की समुद्री ताकत का प्रतीक बना। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना भी कितना दिलचस्प होता है ना। एक तरफ जहां हमने देखा कि कैसे आज ही के दिन आजादी और बराबरी के नए नियम लिखे गए, वहीं दूसरी तरफ नेताजी का वो अनोखा कोइंसिडेंट कि 1940 में जिस तारीख को उन्हें अरेस्ट किया गया, ठीक 3 साल बाद उसी तारीख को उन्होंने सिंगापुर पहुंचकर देश की सबसे बड़ी फौज खड़ी कर दी। सच में इतिहास हमें हमेशा हैरान करता है। चलिए, अब इतनी सारी बातों के बाद वक्त है एक और सुपरहिट ट्रैक का। सुनिए ये गाना और मैं मिलती हूँ आपसे इसके बाद।

दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट में। अब वक्त है हमारे आसपास की जमीनी हकीकत और खबरों से जुड़ने का, जो कि अरुणाचल टाइम्स की पेपर पर छपी है। दोस्तों दी अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइन से यूनियन मिनिस्टर सीएमएसएस डैमेज इन ब्लड इफेक्टेड एरियाज ऑफ ईस्ट सियांग जिले में आई भयानक बाढ़ और कटाव का जायजा लेने के लिए यूनियन मिनिस्टर की एक हाई लेवल टीम और स्टेट के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। जमीनी हालत का मुआयना करते हुए सीएम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और खेती को जो नुकसान पहुंचा है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को सख्त निर्देश दिया है कि आम जनता तक रिलीफ कैंप्स और मदद पहुंचाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड्स रिलीफ मटेरियल्स टू फ्लड अफेक्टेड। इस मुश्किल दौर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स ने आगे आकर राहत कार्यों की कमान संभाली है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित परिवारों के लिए इमरजेंसी रिलीफ पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसमें खाने पीने का सामान, तरपोलिंस, हाइजीन किट्स, जरूरी मेडिसिन और साफ पीने के पानी की बोतल शामिल है। रेड क्रॉस ने अश्योरेंस दी है कि जब तक हालत नॉर्मल नहीं होते उनका रिलीफ ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा।

गवर्नमेंट सीख सेंटर सपोर्ट फॉर रिलीफ रिहैबिलिटेशन। स्टेट में आई इस बड़ी नेचुरल कैलामिटी को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से संपर्क किया है और एक बड़े रिलीफ और रिहैबिलिटेशन पैकेज की मांग की है। गवर्नर ने न्यू दिल्ली को बताया कि स्टेट के कई हिस्सों में रास्ते और पुल टूटने से कनेक्टिविटी पूरी तरह रुक गई है। सेंट्रल सपोर्ट मिलते ही तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने और बेघर हुए लोगों को परमानेंट घर देने का काम प्रायोरिटी पर शुरू किया जाएगा। इस कमिंग ईयर अडॉप्ट्स टाइम बाउंड प्लान फॉर साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, एक बेहद सराहनीय कदम में इस कमिंग के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे जिले को कचरे से मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए एक टाइम बाउंड साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस नए प्लान के तहत हर घर से कचरा अलग अलग किया जाएगा और मॉडर्न रिसाइकलिंग मशीन के जरिए उसे सेफ तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को एक फिक्स टाइमलाइन के अंदर पूरा किया जाएगा ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर करण FM 103.1 MHz है। अब आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार।

दोस्तों, तागिन दालिक में खबरों का सिलसिला के बाद और अब वक्त होता है आपका अपने अगला कार्यक्रम का सदाबहार। दोस्तों, आज की सुबह क्या कमाल की रंगत लेकर आई है। पिछले कुछ दिनों की उस चिपचिपी और अजीब गर्मी के बाद आज हमारे शहर ने एक नया रूप लिया है। आसमान बिल्कुल साफ है, बादलों का नामो निशान नहीं है और एकदम कड़क सुनहरी धूप ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आज का शो हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत खास होने वाले है जो अपनी दुकानों पर जा रहे हैं, खेती बाड़ी के कामों के लिए निकल रहे हैं या ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे टानागर से लेकर स्टेट के कोने कोने तक के मौसम के पूरे हाल पर, वो भी पूरी गहराई के साथ। तो चलिए इस खूबसूरत धूप का स्वागत करते हैं आज के हमारे इस पहले गुनगुनाते हुए गाने के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार और मैं लेकर हाजिर हूं आज का सबसे बड़ा और डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट और हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स यानी ईटानगर की इन डेप्थ वेदर ब्रेकडाउन। दोस्तों, अगर आप ईटानगर, नाहरलगुन, न्यूजुली या बंदरदेवा के आसपास है तो आप देख ही रहे होंगे कि आज मौसम कितना खुशनुमा है। आइए इसके हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में समझते हैं। सुबह का वक्त अभी मर्क्यूरी 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास मंडरा रहा है, जो कि काफी कंफर्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, धूप और सीधी पड़ेगी, जिससे दोपहर का मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 तक पहुंच सकता है। सबसे जरूरी बात, आज आसमान साफ होने की वजह से हवा में ह्यूमिडिटी का लेवल लगभग 72% से 76% के बीच रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप दोपहर को डायरेक्ट धूप में निकलेंगे तो आपको एक्चुअल टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा यानी लगभग 36 से 38 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्माहट और उमस महसूस हो सकती है। आज हवाएं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत हल्की रफ्तार यानी 6 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी, जो धूप के बीच थोड़ी राहत देगी। लेकिन ध्यान रखिए, आज का यूवी इंडेक्स वेरी हाई कैटेगरी में है। इसका मतलब है कि सन रेज डायरेक्ट और तेज है, इसीलिए जो लोग फील्ड पर काम करते हैं या दो पहिया वाहन चलाते हैं वो सनस्क्रीन लगाना और सर को कपड़े से ढकना बिल्कुल ना भूले। शाम होते होते मौसम थोड़ा ठंडा होगा और आसमान हल्का सा क्लाउडी हो सकता है, पर किसी भी तरह की बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है। आप अपने शाम के सारे आउटडोर्स प्रोग्राम, मार्केट का काम या दोस्तों के साथ आउटिंग बिना किसी डर के प्लान कर सकते हैं। चलिए, ईटानगर का हाल तो हमने जान लिया, अब हमारे स्टेट की स्टेट

के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है, वहां का पूरा मिजाज क्या है, उस पर से भी पर्दा उठाएंगे। पर पहले वक्त हो चला है एक और लाजवाब और गुनगुनाते हुए गाने का।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट शो सदाबहार में। ईटानगर की शानदार धूप के बाद अब रुख करते हैं हमारे पूरे स्टेट की तरफ और देखते हैं ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश का डिटेल रीजनल रिपोर्ट। हमारा स्टेट ज्योग्राफिकल रूप से इतना बड़ा है कि यहां हर डिस्ट्रिक्ट का मिजाज बिल्कुल अलग चल रहा है। अगर हम हमारे पहाड़ी जिलों की बात करें तो तवांग और वेस्ट कामेंग के ऊंचे इलाकों में मौसम बेहद ठंडा और सुहाना बना हुआ है। वहां आसमान आंशिक रूप से साफ है और सुबह का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस तक था। दोपहर में भी वहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। यहां लंबे सफर के लिए निकलने वाले लोगों के लिए विजिबिलिटी एकदम परफेक्ट है, कोई फॉग या धुंध नहीं है। हमारे ब्यूटीफुल जीरो वैली और आसपास के सेंट्रल रीजन्स में मौसम ने कमाल की करवट ली है। वहां एक हल्की सुनहरी धूप के साथ ठंडी और ताजा हवाएं चल रही है, जिससे जैसे खेती और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए दिन बहुत बेहतरीन बन गया है। टेम्परेचर यहां 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन रहेगा। अब बात करते हैं हमारे प्लेन्स और फुटहिल्स एरियाज की। सियांग बेल्ट और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में मौसम थोड़ा अलग है। वहां धूप तो निकली है लेकिन रिवर बेसिन के पास होने के कारण ह्यूमिडिटी लेवल 82 डिग्री सेल्सियस तक हाई चल रहा है। इसका मतलब यह है कि पासीघाट और नामसाई जैसे इलाकों में आज दोपहर को काफी हेवी स्वेटिंग और उमस वाली गर्मी होने वाली है। सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि स्टेट वेदर स्टेशन के मुताबिक अगले 24 से 36 घंटों तक पूरे अरुणाचल प्रदेश में किसी भी तरह का हैवी रेनफॉल या क्लाउड बर्स्ट का कोई अलर्ट नहीं है। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में भी रास्ते साफ है और ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। हमारे उन भाइयों के लिए जो रोडवेज पर हैवी व्हीकल्स चलाते हैं, आज का दिन ड्राइव करने के लिए बिल्कुल सेफ और क्लियर है। मौसम की इस पूरी और इन डेप्थ रिपोर्ट के बाद अब दिल को तोड़ो और थोड़ा और सुकून देते हैं, सुनते हैं आज का शो का ये तीसरा और आखिरी शानदार गाना।

0: तो दोस्तों अब वक्त हो चला है शो को यहां पर समाप्त करने का और आपसे विदा लेने का। यह आकाशवाणी का ईटानगर करोना एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारा स्टेशन। दोस्तों कहीं मत जाएगा, अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।
1: जिंदा है हम ही से नाम उद्धार का।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज

0: दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरण

0: बद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्त्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। दो क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस, एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on

स्वागत है आप सबका फिर से दोस्तों। दिल्ली और शिलांग से खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है और अब शुरू होता है आपका मॉर्निंग शो हेलो ईटानगर। दोस्तों आज 2 जुलाई है और पूरी दुनिया में इसे वर्ल्ड यूएफओ डे के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्मांड की सृष्टि, अनजान आसमान और एलियंस की कहानियों ने हम सभी को कभी न कभी जरूर सोचने पर मजबूर किया होगा। आज के सेगमेंट में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे।

और जानेंगे कि इसके पीछे का असली वैज्ञानिक सच क्या है और लोग कहाँ गलती करते हैं। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले चलो सुनते हैं आज का ये पहला गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके टेक्निकल नाम को समझना होगा। हम हमेशा से यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सुनते आए हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस और नासा जैसे बड़े संस्थानों ने अब इसका नाम बदलकर यूएपी कर दिया है, जिसका फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड एनोमेलस फेनोमेना। इसका सीधा सा मतलब है आसमान में कोई भी ऐसी उड़ती हुई चीज या रोशनी दिखाई देने जिसे हमारा रेडर्स या पायलट्स तुरंत ना पहचान सके कि वो क्या है। लेकिन यहां सबसे बड़ा भेदभाव और गलती लोग ये करते हैं कि वो समझते हैं कि अगर कोई चीज अनएक्सप्लेन है यानी जिसका जवाब तुरंत नहीं मिला तो वो पक्का किसी दूसरे ग्रह का है, स्पेसशिप होगा। साइंस इस तरह काम नहीं करता। एक अनजान रोशनी देखने में और दूसरे ग्रह पर जीवन का पक्का सबूत मिलने में जमीन आसमान का फर्क है। इतिहास गवाह है कि जब भी आसमान में ऐसी अजीब साइटिंग्स की जांच की गई है तो लगभग 95% से 98% मामलों में ये साफ हो गया है कि वो सब धरती की ही चीजों की वजह से हुआ था। जैसे कि किसी देश का कोई नया टॉप सीक्रेट मिलिट्री ड्रोन या स्पाई एयरक्राफ्ट जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं था। मौसम की जांच करने वाले ऊंचे वेदर बलून्स जो धूप में चमकने लगता है, या फिर प्रकृति का कोई अनोखा चमत्कार जैसे बादलों में रोशनी का रिफ्लेक्शन या स्पेस डिब्रीज यानी पुराने सैटेलाइट्स का कचरा का एटमॉस्फेयर में आकर जलना। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सब धरती की ही चीजों का बटकाव है तो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसकी जांच पर इतना ध्यान क्यों करते हैं? इसका पूरा वैज्ञानिक ताना बाना क्या है, इस पर से पर्दा उठाएंगे हमारे अगले सेगमेंट में। पर पहले वक्त है आज के दूसरे गीत का।

स्वागत है आपका एक बार फिर से हेलो ईटानगर में। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि साइंटिस्ट और बड़े देश इन अनएक्सप्लेन एरियल फेनोमेना के पीछे इतना रिसर्च क्यों लगाते हैं। इसके पीछे तीन सबसे बड़े और ठोस वैज्ञानिक कारण हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। किसी भी देश की सरकार के लिए सबसे पहले उसके आसमान की सुरक्षा आती है। अगर हमारे एयर स्पेस में कोई ऐसी चीज उड़ रही है जो रडार पर सही से नहीं दिख रही तो साइंटिस्ट को ये जांच करना पड़ता है कि कहीं वो किसी दुश्मन देश का कोई नया और एडवांस स्पाई ड्रोन तो नहीं है। यानी ये मामला एलियन से पहले नेशनल सिक्योरिटी का होता है। कई बार आसमान में ऐसी अजीब फ्लाइट्स दिखती है जो किसी नए नेचुरल

की वजह से होती है। इनकी इस तरह करने से हमारी वैज्ञानिकों को धरती के एटमॉस्फेयर और स्पेस के बारे में नई जानकारी मिलती है। नासा और दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ब्राह्मण में जीवन की खोज कर रहे हैं, इसीलिए नासा ने एक पूरी स्पेशलाइज्ड टीम बनाई है जो टाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सैटेलाइट्स के जरिए इन यूएपीएस की जांच करती है, ताकि अगर कभी सच में कोई अनोखी चीज मिले तो हमारे पास उसका पक्का साइंटिफिक प्रूफ हो, ना कि सिर्फ अफवाह या मनगढ़ंत कहानियां। इसलिए दोस्तों, वर्ल्ड यूएफओ डे का असली मकसद अफवाहें फैलाना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाना है। हमें किसी भी अफवाह पर तुरंत विश्वास करने के बजाय सबूत और लॉजिक पर ध्यान देना चाहिए। साइंस का सीधा नियम है, अगर दवा बड़ा है तो सबूत भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। मौसम और ज्ञान की इस चर्चा के बाद चलिए लुत्फ उठाते हैं आज के तीसरे और आखिरी गाने का।

तो दोस्तों ये था आज का 2 जुलाई यानी यूएफओ डे पर हमारा एक डिटेल एजुकेशनल ब्रेकडाउन। आज ईटानगर का मौसम भी बिल्कुल साफ है और अच्छी धूप खिली हुई है, तो इस खुशनुमा दिन को पूरा फायदा उठाइए और अपने सारे काम पूरे कीजिए। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। यह आकाशवाणी ईटानगर का रन FM 103.1 MHz है। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के हस्तांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली

0: निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं को छोड़कर विध्वंस कार्य और धूल उत्पन्न करने वाले खुले निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और ये 28 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह आज बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार और अब वक्त हो चला है उस सेगमेंट का जहां ग्लिट्स है, ग्लैमर है और ढेर सारी मसालेदार कहानियां हैं। आप सभी को इस चमचमाती सुबह का बहुत बहुत नमस्कार। आकाशवाणी के सबसे मसालेदार, चटपटे और ताजे तरीन शो में जिसका नाम है फिल्मी गपशप। दोस्तों अगर आप भी हैं फिल्मों के दीवाने और बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी ताजा खबर पर रहती है आपकी नजर, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन बड़े और बिल्कुल करंट अपडेट्स की जो इस वक्त इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, फिल्मी सफर शुरू हो चुका है। चलिए इस धमाकेदार शुरुआत को और थोड़ा शानदार बनाते हैं इस ये गीत से।

वेलकम बैक फिल्मी दीवानों, आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। और दोस्तों, शो की शुरुआत में ये बात करते हैं उस टीजर की जिसने इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर एक गुड़ाल ला दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्वेता कपूर की आने वाली फिल्म ईता की टीजर की। टीजर के आते ही फैंस बिल्कुल क्रेजी हो गए हैं। और सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये फिल्म श्रद्धा के करियर की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू मूवी होने वाली है। उनका एक्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन इस लेवल का है कि जब आप टीजर देखते हैं तो आपको कहीं भी श्रद्धा कपूर नजर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ उनका धांसू कैरेक्टर ईता भाई, सिर्फ वही कैरेक्टर दिखता है स्क्रीन पर। इतना कन्विंसिंग और रॉ अवतार उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया। मजेदार बात यह है कि दोस्तों, सोशल मीडिया पर फैंस इस टीजर को YRF स्पाई यूनिवर्स की ब्लॉकबस्टर फिल्म अल्फा से कंपेयर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जहां अल्फा का एक्शन बहुत बड़ा था, वहां ईता का टीजर अपने रो इंटेंस लुक और बैकग्राउंड स्कोर से कड़ी टक्कर दे रहा है। श्रद्धा ने सच में सबको हैरान कर दिया है। वैसे कि आपने टीजर देखा, सोचिए इस बारे में। तब तक सुनते हैं ये दूसरा बेहतरीन गीत।

आप जुड़े हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी गपशप में और चलिए अब रुक करते हैं बॉलीवुड की अगले बड़े और बिल्कुल ताजे हेडलाइंस की तरफ। दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि किंग खान यानी शाहरुख खान के अगले मेगा प्रोजेक्ट से सोर्स के मुताबिक डायरेक्टर एथली और एसआरके ने जवान 2 की कोर स्क्रिप्ट पर काम पूरा कर लिया है। खबर है कि इस बार कहानी पहले से भी ज्यादा बड़ी और ग्लोबल लेवल की होने वाली है जिसमें शाहरुख खान एकदम नए और पहले से भी खतरनाक अवतार में दिखेंगे। सोशल मीडिया पर जवान 2 अभी से ट्रेंड करने लगा है और फैंस उनके इस कमबैक अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए इस धमाकेदार अपडेट के बाद सुनते हैं एक और शानदार गाना।

वेलकम बैक दोस्तों। बॉलीवुड की गपशप यूं ही चल रही है और खबरें बिल्कुल गर्म है। अगला बड़ा अपडेट आ रहा है मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स से। स्ट्रीट टू की के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद अब स्ट्रीट थ्री की प्री प्रोडक्शन और लोकेशन स्काउटिंग अगले महीने से शुरू होने जा रही है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज का तीसरा हिस्सा पहले से कहीं ज्यादा डरावना।

सीखना और कॉमेडी से भरपूर होने वाला है। सोर्स की माने तो इस बार इस यूनिवर्स में एक नया भूतिया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका कैमियो इस साल के एंड में आने वाली एक और फिल्म में दिखेगा। चलिए संगीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का ये अगला गाना।

दोस्तों अब बात करते हैं रणबीर कपूर की, उनके आने वाली मेगा बजट फिल्म रामायणा के वीएफएक्स और सीजीआई का नाम इस वक्त पूरे जोर जोर से चल रहा है। ताजा खबर यह है कि फिल्म के ग्रैंड वॉर सीक्वेंस के लिए डायरेक्टर नितेश तिवारी ने हॉलीवुड के उन्हीं स्टंट कोऑर्डिनेटर्स को साइन किया है जिन्होंने बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। रणबीर कपूर का लॉर्ड ड्रामा वाला लुक बिल्कुल लॉक हो चुका है और फिल्म का पहला ऑफिशियल टीजर भी रिलीज हो चुका है। चलिए इसे एक्साइटमेंट के साथ सुनते हैं शो का अगला गीत।

वेलकम बैक टू फिल्म में कपशप दोस्तों, मौसम फिल्म में है और अपडेट्स बिल्कुल ऑन पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्री के सबसे डैशिंग स्टार कार्तिक आर्यन की। सोर्स से पता चला है कि कार्तिक ने एक नई बिग बजट रोमकॉम साइन की है जिसकी शूटिंग लंदन और यूरोपियन लोकेशन पर शुरू होने वाली है। भूल भुलैया के धमाके के बाद कार्तिक अब दोबारा अपने रोमांटिक हीरो वाले अवतार में हैं, लौट रहे हैं और फैंस इस बात से बेहद खुश है कि इस बार उनके साथ एक नई फ्रेश लीडिंग लेडी नजर आने वाली है जिसका नाम अभी तक मेकर्स ने छुपा कर रखा है। इस मस्त अपडेट के बाद थोड़ा संगीत का मजा लेते हैं। चलिए सुनते हैं ये अगला गीत।

दोस्तों बात करते हैं दीपिका पादुकोण की स्क्रीन पर वापसी की। अपने ब्रेक के बाद दीपिका ने अब अपनी अगली फिल्म हीरोइन सेंट्रिक एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर दी है। ये एक हाई ऑक्टेन स्पाई ड्रामा होने वाला है जिसमें दीपिका पूरे देश को बचाते हुए नजर आएंगे। स्क्रिप्टिंग पर फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं और डायरेक्टर इस साल के मिड तक रोलिंग शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए अब सुनते हैं आज का शो का अगला गाना।

0: Superior handling.
1: Attention.
0: Superior handling.
2: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in riverbeds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions.
3: So, इस खास सेगमेंट को तो अब अलविदा कहने का समय आ गया है. ये आकाशवाणी का ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है. अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार.
2: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Warning is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness. Pare Hydro Power Station is currently in
0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar.
4: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे. ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी. वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है. प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची. ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे. केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है. ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है. नई योजना वर्ष 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी. नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर से ये योजना लागू रहेगी. सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है. एक रिपोर्ट.
5: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए. मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर

0: ज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से अपनी हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों दिल्ली से समाचार के बाद अब आ रही है हमारी कार्यक्रम का अगला सेगमेंट रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों इस शो पर ना ही मेरी कोई स्क्रिप्ट होती है, ना ही कोई आप कोई पहले से तय कहानी तय किया जाता है। यहाँ बस आपकी मैसेजेस होती है और उनमें बसे होते हैं, जज्बात होते हैं। आज के इस सफर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बुखाखात असम से आई एक बेहद नयाब और गहरी मैसेज के साथ। हमारे बहुत ही लॉयल लिसनर हर्षित गोस्वामी जी ने हमें याद किया है और एक ऐसी फरमाइश भेजी है जिसे सुनकर दिमाग को एक सुकून मिलता है। हासू का गाया हुआ एक बेहद खूबसूरत इंडी पॉप नगमा जो हमें जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को गले लगाने सिखाता है। हर्षित की पसंद पर और पोखाखात की सभी दोस्तों के लिए पेश है ये बेहद प्यारा गीत, जिंदगी ऐसे ही चलती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अरुण एफएम और ये है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम वीडियो ऑन डिमांड। जिंदगी सच में चलने का ही नाम है दोस्तों, और इस चलते हुए सफर को जो चीज सबसे खूबसूरत बनाती है वो है मोहब्बत। चलिए इसे मोहब्बत का रंग घोलने के लिए अब रुख करते हैं हिगी बागरा की तरफ, जहां से हमारी बेहद प्यारी श्रोता गुमेमई बागरा ने हमें मैसेज लिखी है। गुमे जी ने आज

दूसरे दौर का एक ऐसा सुनहरा हीरा चुनकर भेजा है जो सीधे दिल पर दस्तक देता है। अनुराधा पौडवाल जी और हमारे अजीज लेट पंकज उदास जी की आवाज में फिल्म बाहर आने तक का एक नशीला और बेहद संगीतमय गीत। गुमे जी, इस लाजवाब और बेहतरीन पसंद पर हिगी बागरा के सभी दोस्तों के लिए पेश है ये खूबसूरत गजल स्टाइल ट्रैक मोहब्बत इनायत करम।

दोस्तों, सुरों की बहार अभी रुकी नहीं है, बल्कि अब तो माहौल पूरी तरह से दीवानेपन के रंग में डूबने वाला है। चलिए अब सीधे चलते हैं लंखनसम कार्बी अंगलोंग की तरफ, जहां से दोस्ती की एक पूरी जोरदार गैंग ने हमें याद किया है। टेंशन क्रो, रोजमेरी क्रो और सरलो, आप चारों ने मिलकर एक ऐसे गाना रिक्वेस्ट किया है जिसे सुनते ही हर किसी का दिल धड़कने लगता है। फिल्म हमको दीवाना कर गए का टाइटल ट्रैक। दोस्तों, जब प्यार में कोई हद नहीं रहती, तब ऐसे ही खूबसूरत गीत बनते हैं। तो लंखनसम कार्बी अंगलोंग के हमारे इन प्यारे लिसनर के नाम और उनके इस प्यारे से दीवानेपन के लिए पेश है ये सुपरहिट ट्रैक, हमको दीवाना कर गए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण एफएम और हमारा ये सेगमेंट चल रहा है रेडियो ऑन डिमांड। दोस्ती और प्यार का सिलसिला बढ़ती हुए अब पहुंच चुका है गोलाघाट असम। वहां से हमारे तीन बहुत ही प्यारे और लॉयल लिसनर रोमेश, रूनू और लकी ने एक साथ मिलकर मैसेज भेजा है। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है 90s का वो बेहद प्यारा और हसीन गाना जिसे सुनते ही दोस्तों की याद आ जाती है। फिल्म सिर्फ तुम से पंछी सुर में गाते हैं और मजे

दोस्तों, माहौल में सुकून के बाद अब थोड़ा धूम धड़ाका और शरारत घोलने का वक्त हो चला है। अगली फरमाइश आई है हमारी एक प्यारी लिसनर गीता की तरफ से, जो असम से हैं। गीता ने बड़ी ही चुलबुली पसंद भेजी है। फिल्म मुझसे शादी करूंगी से सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा का वो ब्लॉकबस्टर ट्रैक लाल दुपट्टा। इस गाने की भेजते ही दिमाग में वो नाचते हुए रूमाल और मस्ती याद आ जाती है। तो गीता, आपकी सुपरहिट और एनर्जेटिक पसंद पर पेश है ये लाजवाब गीत।

दोस्तों चलिए अब मस्ती से थोड़ा निकलकर रुक करते हैं उस दौर के जिसे हम बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहते थे। जुनैद देमा जी से हमारे लिसनर बिमोल बसुमतारी ने हमें याद किया है और उन्होंने गुजरे जमाने के सबसे एनर्जेटिक स्टार यानी हमारी शमी कपूर जी का एक बेहद सदाबहार रोमांटिक नगमा चुनकर भेजा है। फिल्म जानवर से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाया हुआ मेरी मोहब्बत जवान रहेगी। दोस्तों पुराने गानों की बात ही कुछ अलग होती है, उनका हर एक शब्द सीधे दिल को छू लेता है। तो बिमल जी के इस बेहतरीन और यादगार रेट्रो चॉइस पर जुनैद देमा जी के सभी श्रोताओं के लिए पेश है ये लाजवाब ट्रैक।

दोस्तों, रफ़ी साहब के इस पुराने गीत ने ने तो माहौल ही एक ऐसी ताजगी भर दी है कि अब मन कर रहा है कि थोड़ा कला और संगीत की गहराई में डूब जाऊं। और हमारी अगली फरमाइश बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे डेली लिसनर अमल बसुमतनी ने हमें याद किया है और फिल्म गजागमिनी से एक बेहद अनोखा और बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल टच गीत चुनकर भेजा है। कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में मेरी पायल बोले। दोस्तों, इस गाने में जो मिट्टी की खुशबू और घुंघरू की झनकार है वो सीधे दिल को सुकून देती है।

और अमल ने ये प्यारा सा गीत हमेशा की तरह अपने दोस्तों के नाम डेडिकेट किया है। तो अमल और उनके सभी यारों के लिए माधुरी दीक्षित की आइकॉनिक एंड ग्रेसफुल अंदाज वाला ट्रैक पेश है।

ख्वाहिशों की मैसेजेस और रिक्वेस्ट तो हमारे पास अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन अफसोस वक्त की पाबंदी के कारण आज हमारे सेगमेंट रेडियो ऑन डिमांड का सफर बस यहीं तक रहेगा। जिन दोस्तों के गाने आज जुड़ गए हैं, मैं उनसे माफी चाहती हूं और आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप अपना रिक्वेस्ट कल जरूर भेज सकते हैं। दोस्तों, ये था कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसार में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसार निष्पादक गहिरत और तकनीकी अभियंता पीवी द्योरी। दोस्तों, कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे कविता के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइचे भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइचे के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया गया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लौटकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के हालात की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल भेजा जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर

0: की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सहमेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Japanese Prime Minister Sanae Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Prime Minister Narendra Modi was also present on the occasion. Prime Minister Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi later today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. The central government notified the Employees Provident Fund EPF Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952 as part of the implementation of Code on Social Security 2020. Under the new scheme, the mandatory EPF contribution remains unchanged at 12% of wages each from the employee and employer, while the existing 10% rate will continue to apply to notified establishments by the central government. The new scheme came into effect on 29th of the last month with its publication in the Gazette. The government issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. According to the sources, the Ministry of Electronics and Information and Technology has directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The Civil Aviation Ministry has announced that India achieved a major milestone with approval of the country's first private point-in-space instrument approach procedure for helicopter operations at Undavalli Heliport. Point-in-space procedures use advanced satellite-based navigation technology to enable helicopters to conduct safe and precise instrument approaches to heliports that do not have conventional instrument landing infrastructure. The 29th National E-Governance Conference, being held in Jaipur, will conclude today with the presentation of the National E-Governance Awards. The awards recognize outstanding initiatives by central and state governments and other organizations in promoting excellence in e-governance.

नमस्कार श्रोता दोस्तों, मेरी वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज। आप सुन रहे हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आज इस आपके समक्ष प्रोग्राम्स को पेश कर रहे हैं प्रसारण अधिकारी पंचानंद डोले, तकनीकी अभियंता एचएम भूषण और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी और मैं आपकी रेडियो साथी कविता। आप सभी श्रोताओं का इस प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम फिल्मी लहर। पर प्रोग्राम के पहले आइए झटपट से नजर डालते हैं हमारे आज के इस दूसरे प्रसारण में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी की ओर। 11:30 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम वेस्टर्न मेलोडीज। 12:00 आप सुन पाएंगे हिंदी और इंग्लिश न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से। 12:10 पर आप सुन पाएंगे नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। 12:30 पर आप सुन पाएंगे फौजी भाई बहनों का कार्यक्रम गीतमाला। 1:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। 1:10 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 1:02 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिडडे न्यूज। उसके बाद आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार। हिट्स ऑफ 90s में आप सुन पाएंगे 90 के दशकों के बेहतरीन गाने। 2:30 पर 2:58 पर आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस। मिसमी श्रोताओं का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 3:00। 3:15 पर आप सुन पाएंगे तायखामती श्रोताओं का कार्यक्रम। बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गाने आप सुन पाएंगे 3:30 पर। 3:40 पर आप सुन पाएंगे वांचो श्रोताओं का समाचार। 3:45 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गाने। ईदू मिसमी श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 4:00। 4:05 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गाने। 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तो ये थी हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और आइए अब चलते हैं हमारे प्रोग्राम

0: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: माना कि तुम लफ्जों के बादशाह हो, माना कि तुम लफ्जों के बादशाह हो, पर हम खामोशी पे राज करते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम फिल्मी लहर, और आगे आइए सुनते हैं रांझना फिल्म का ये गाना श्रेया घोषाल एवं अन्वेषा के आवाजों में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोग्राम वेस्टर्न मेलेडीज का। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. Earlier today, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. The central government notified the Employees Provident Fund EPF Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952 as part of the implementation of Code on Social Security 2020. Under the new scheme, the mandatory EPF contribution remains unchanged at 12% of wages each from the employee and employer, while the existing 10% rate will continue to apply to notified establishments by the central government. The new scheme came into effect on the 29th of last month with its publication in the Gazette. India has reiterated its firm stance that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: The Delhi Police Special Cell has arrested four accused in a crackdown on ISI-sponsored interstate terror and arms network. Police said the accused were planning to carry out a terror activity in the national capital on instructions of ISI handler Shahzad Bhatti and his associates. During the operation, two foreign-made pistols, 9 live cartridges and 5 mobile phones were recovered. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Yatra from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu this morning. The 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on August the 28th. In Ukraine, 11 people were killed and dozens of others injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kyiv as part of a broader wave of Russian overnight attacks. Local media reported that several explosions were heard across parts of the city overnight into Thursday. Air raid sirens sounded across the city and many residents took shelter in metro stations. The southwest monsoon today has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. Refreshing showers in the national capital provided much relief from hot and humid weather. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Youri Tielemans scored a 125th minute penalty to seal a dramatic 3-2 victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002 this morning. And with that, we end this news bulletin.

आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz में, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रुति, दोस्तों आइए आप सुनते हैं नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। जी हाँ, एल्बम के सॉन्ग्स आइए इस प्रोग्राम में सुनते हैं। आज ज्यादातर इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे नेहा कक्कर के गाए सॉन्ग्स। नेहा कक्कर, जी हाँ, उनकी गिनती आज बॉलीवुड की सबसे सफल और लोकप्रिय गायिकाओं में होती है। अपनी सुरीली आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाली नेहा अभी कभी एक कमरे के किराए के मकान में रहती थी और उनके पिता गुजारे के लिए स्कूल के बाहर समोसे बेचते थे। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने केवल 4 साल की उम्र में अपनी बहन सोनू कक्कर और भाई टोनी कक्कर के साथ माता के जगराते और भजनों में गाना शुरू कर दिया था। उनके सफर पर आगे भी बात करेंगे, पर आइए सुनते हैं नेहा कक्कर का गाया ये गाना।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स, और आज इस प्रोग्राम में आपको ज्यादातर गाने हम सुना रहे हैं नेहा कक्कर पर। जी हाँ, नेहा कक्कर इंडियन आइडल की जर्नी पर उनकी बात करते हैं। साल 2006 में नेहा ने रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 2 की कंटेस्टेंट बनी थी। वह भले ही शो जीत नहीं पाई थी, लेकिन सालों बाद उसी शो की जज बनकर उन्होंने एक मिसाल कायम की। नेहा पहली भारतीय महिला गायिका है जिन्होंने यूट्यूब डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वो दुनिया भर में लगभग हजारों से ज्यादा अधिक म्यूजिकल कॉन्सर्ट कर चुकी है। हिट मशीन के नाम से भी जानी जाती है।

0: Pare.
1: Attention! Pare Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता दोस्तों, आपने सुना नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। आज इस प्रोग्राम में आपने सुना नेहा कक्कर एवं टॉनी कक्कर के गाए गानों को। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी टारगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे फौजी भाई बहनों का कार्यक्रम गीतमाला।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

आप सभी का फौजी भाई बहनों का प्रोग्राम गीतमाला में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी सख्त हो, हौसला अगर पक्का हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम में ये पहला गाना लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफी की आवाज में आशा फिल्म से।

0: जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं फौजी भाई बहनों का प्रोग्राम गीत माला। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। और आइए अब सुनते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में फूल और अंगार का ये गाना।
2: सारे अपडेट्स के लिए

शक्तिमान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे हैं उदित नारायण एवं साधना सरगम के आवाज में। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे थे फौजी भाई बहनों का प्रोग्राम गीतमाला। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
2: तेरे दिल का मेरे दिल से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
4: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
5: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
3: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Earlier, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Prime Minister Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counterterrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said a terrorist is a terrorist and emphasized that the counterterrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
4: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
6: 7 migrant workers have lost their lives after a big chunk of rock slid and fell on them in Bengaluru South Taluk today. The tragedy struck at the Kaveri Crusher Stone Quarry in Madhapatna village. Those injured were evacuated from the accident site and are currently under medical treatment. The police have registered a case and the hunt is on for the owners of the quarry. The Delhi Police Special Cell has arrested 4 accused in a crackdown on ISI-sponsored interstate terror and arms network. Police said the accused were planning to carry out a terror activity in the national capital on instructions of ISI handler Shahzad Bhatti and his associates. During the operation, 2 foreign-made pistols, 9 live cartridges and 5 mobile phones were recovered. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Yatra from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu this morning. The 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on the 28th of next month. In Ukraine, 13 people were killed and dozens injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kiev, as part of a broader wave of Russian overnight attacks. Local media reported that several explosions were heard across parts of the city overnight into Thursday. Air raid sirens sounded across the city and many residents took shelter in metro stations. Russia's drone and missile attacks come after Ukrainian drones targeted Moscow earlier this week. The southwest monsoon has further advanced today into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. Refreshing showers in the national capital provided much relief from hot and humid weather. According to IMD, monsoon is expected to advance further into several parts of North India during the next 2 to 3 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in afternoon trade today. The Sensex jumped 412 points at 76.

0: 7,335, while the Nifty added 119 points to 24,124 when reports last came in. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Youri Tielemans scored a 125th-minute penalty to seal a dramatic 3-2 victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. And with that, we end this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज. आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 MHz में. और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम हेलो फरमाइश.
2: हेलो फरमाइश.
3: हाँ भैया जी, नमस्कार.
2: नमस्कार, काफी अरसे बाद आपने हमें याद किया.
3: जी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं.
2: जी योगेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और कहिए कैसा है हाल चाल?
3: बढ़िया है भैया, अच्छा है. बस बारिश का ही इंतजार है अभी तक.
2: अच्छा, अभी तक हुई नहीं आपके वहाँ बारिश?
3: नहीं, बहुत इस बार काफी ज्यादा लेट हो गया है भैया.
2: ओके जी जी जी, हमारे यहाँ तो लगातार बारिश ही बारिश हो रही है.
3: हाँ जी
2: जी, तो कोशिश करता हूँ थोड़ा आपके वहाँ पे भेज दूँ ताकि आप सभी को राहत मिले.
3: स्वागत रहेगा.
2: जी जी जी, तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनना चाहेंगे?
3: फिल्म द ट्रेन से सुनवा देंगे, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी.
2: ओहो,
3: खराबी दिल खो गया.
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त गाना. और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
3: हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के तमाम साथी. कुछ साथियों के नाम लेना चाहेंगे. श्रीपाल गोयल जी हैं, लोकेन्द्र वर्मा जी हैं, दिलीप पहुजा जी हैं, रोशन देवांगन जी हैं, संतोष वैष्णव जी हैं, मुकेश शर्मा जी हैं, राम स्वरूप गुप्ता जी हैं, दिनेश देवांगन जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, गौतम सिंह जी हैं, जगदीश रायगढ़ जी हैं, केसरी सिंह जी हैं और बाहुबली फुरसुले जी हैं, सुनील झा जी हैं और तमाम साथी, किसी का नाम छूट गया होगा तो.
2: ओके, तो योगी जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सुनते हैं आपके पसंद का गाना.
3: बहुत शुक्रिया.
2: शुक्रिया.

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्ते। मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: जी। प्रेम सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए कैसे हैं?
1: थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए, आप कैसे हो?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ
1: जी, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: जी। हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने हमें याद किया।
1: जी, मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं आपके।
0: अच्छा जी। आप
1: जी
0: सिर्फ
1: हाँ,
0: हेलो फरमाइश ही सुनते हैं या फिर कोई और प्रोग्राम भी सुनते हैं हमारे यहाँ?
1: नहीं, फोन इन प्रोग्राम ज्यादा सर सुनता हूँ सर मैं।
0: अच्छा, जी।
1: हाँ, और सुनने के साथ में रिकॉर्ड भी रखता हूँ अपना।
0: अच्छा क्या बात है
1: जी
0: जी।
1: हाँ, जिस आकाशवाणी में मेरा कॉल लगता है उसको मतलब तारीख के साथ में लिखता हूँ, एक रजिस्टर बना रखा है मैंने।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: जी
0: जी।
1: जी हाँ, 2026 से मैंने ये काम शुरू किया है, तो अभी मतलब 800 कॉल हो चुके हैं मेरे तमाम आकाशवाणी पे मिलाकर।
0: अच्छा, पूरे
1: जी
0: देश में
1: हाँ
0: जितने भी रेडियो स्टेशन है आप वहाँ पे कॉल लगाते हैं?
1: हाँ कम से कम सभी जगह तो नहीं लगा पाता हूँ सर, टाइम
0: अच्छा
1: भी नहीं मिलता है उस
0: हाँ जी
1: साथ
0: हाँ
1: में।
0: जी हाँ जी जी जी जी सही बात है।
1: लेकिन जब तक मतलब आपको बताऊँ, 30 से 30 आकाशवाणी के लगभग मैं जुड़ता हूँ मैं।
0: ओके वाह वाह क्या बात है। तो इसी तरह से हमसे भी जुड़ते रहिए आगे भी
1: जी
0: जी।
1: बिल्कुल
0: तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
1: जी सर, फिल्म का नाम है हीरो नंबर वन और गाने के बोले सोना कितना सोना है।
0: ओहो जी, जरूर
1: जी
0: सुनाएंगे।
1: हाँ
0: और साथियों का नाम लेना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, लोकेंद्र वर्मा, आशुतोष अविना, संगीता जी, भगवान सिंह परमार और सुनील झा भोपाल से, रमेश टेलर भोपाल से हैं, और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है हेलो फरमाइश रेडियो एक्टा ग्रुप, उसके
0: जी।
1: सभी श्रोता रहेंगे और आपके लिए भी सर ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम सिंह जी,
1: जी
0: सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार नमस्कार जी, बहुत दिन के बाद आपसे मेरा बात।
0: जी काफी दिन के बाद आप हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी, हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपने हमें याद किया।
1: से बातचीत करना
0: जी।

0: अमूमन क्या होता है, बहुत सुकून मिलते हैं, है
1: जी
0: ना
1: बिल्कुल हाँ, काफी दिनों के
0: जी।
1: बाद अपने दिल
0: तो
1: की बात करना अच्छा लगता है जी।
0: मैं अनुप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट के करीमगंज, असम से ताल्लुका।
1: जी अनूप दा हमारे नियमित श्रोता
0: और हमारे दोस्त भी अच्छे हैं,
1: जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ आप
0: मैं
1: भी अच्छे हैं।
0: आशा करता हूँ
1: जी जी जी
0: मैं भी अच्छा हूँ, ठीक ठाक हूँ।
1: जी
0: और
1: मौसम भी अच्छा होगा
0: आपके वहाँ
1: अनूप
0: के
1: दा
0: मौसम के क्या मिजाज कैसे हैं?
1: जी, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है लगातार
0: जी,
1: जी, और आपके
0: हमारे
1: वहाँ का
0: यहाँ पे
1: मौसम
0: तो
1: कैसा है?
0: बारिश हो रहा है कभी कभी,
1: अच्छा,
0: कभी कभी क्या होता है मतलब बारिश बंद हो जाते हैं, गर्मी से परेशान हो जाता
1: जी
0: हूँ,
1: हाँ जी हाँ जी, ये तो सही
0: ऐसा ही
1: बात है
0: माहौल हो रहा है। अभी थोड़ा बहुत बादल छाए हुए हैं और गिरने का संभावना है,
1: जी।
0: तो जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए, है ना।
1: वाह वाह वाह वाह जी, बहुत ही सही बात कही आपने।
0: तो आज एक फिल्म है मेरा
1: ओके
0: जैस के, तो फिल्म का नाम है धर्म करम,
1: ओके, धर्म
0: और
1: कर्म।
0: गाने का बोल ऐसे है, हेलो,
1: हाँ जी हाँ जी, बोलिए।
0: धर्म करम के एक गाने हैं पीतल जी की आवाज में,
1: हाँ जी
0: गाने का बोल ऐसे है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल, जग में रह जाएंगे यारे तेरे बोल, ऐसे करके गाने हैं,
1: जी जी जी बहुत ही प्यारा गाना है जी, जरूर
0: प्यारा
1: सुनेंगे।
0: गाने हैं।
1: हाँ जी
0: आज क्या हुआ दोस्त, मोबाइल ये जो स्क्रॉल कर रहा था ये यूट्यूब पर, फिर अकस्मात ये गाना मेरा कानों में फटाफट
1: अच्छा वाह।
0: आया, और मैंने सोचा हमारे दोस्त से ये गाने साझा करेंगे, है ना।
1: ओके जी जी जी जरूर
0: और
1: सुनाएंगे
0: कुछ दोस्तों को मैं याद करता
1: जी
0: हूँ,
1: जी बिल्कुल। हाँ जी
0: पहले है हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे जिसका नाम है बसंतीलाल सूर्यवंशी जी, और है श्रीकांत जोशी जी, अमर सिंह साहू जी, अविनाश जी, प्रेम जी चक्रवर्ती जी है, बसंती उसका नाम है जी, विजय सिंह लखेरा जी है, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी है, और ढेर सारे श्रोता भी सुन रहे हैं इस मन भावन प्रोग्राम सबके लिए,
1: सभी को आप
0: और
1: डेडिकेट
0: खास
1: करना
0: करके
1: चाहते हैं
0: हमारे दोस्त बाके बागरा और
1: नूरी मैडम के
0: मैडम
1: लिए।
0: के लिए, है ना।
1: जी जी जी हाँ जी
0: तो चलिए बातचीत को यहीं पे विराम देता हूँ,
1: जी
0: बहरहाल
1: जी
0: आप
1: जी
0: अच्छे रहिए, हमारे सब भाई बहन अच्छे रहे, ये
1: जी
0: भगवान से गॉड से मेरा प्रे
1: जी

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए, कैसे हैं आप? आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मैं भी ठीक हूँ सर, आप भी अच्छे हैं। यहाँ का मौसम सर, पानी कल गिरा सर, आज अभी
0: अच्छा,
1: बादल किया है
0: ओके।
1: और कल धूप और परसों धूप किया था, अभी 1-2 दिन पहले भी पानी गिरा सर, वो धूप बादल किया, आज तो बादल किया है, इसी तरह से पानी गिर गया है सर यहाँ।
0: अच्छा, चलिए, गर्मी से जो राहत मिल रही होगी आप सभी को बारिश के कारण। और आप
1: जी
0: अभी
1: सर,
0: कहाँ पे, नर्सरी पे हैं या कहीं और?
1: आज मैं सर घर पे हूँ सर, तो उससे लड़का तो जरूरी काम था, तो बोले कि थोड़ा सा जरूरी काम है तो
0: अच्छा, जी,
1: चलना हूँ एक जगह, तो मैं बोला ठीक है, आज घरे में रहता हूँ, घरे से आज फोन करता हूँ।
0: ओके। तो कहिए इंद्रभान सिंह जी, कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे
1: आज
0: आज?
1: मैं सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है गन्नी बीट सन्नी, जो नहीं गाना सावन में लग गई आग, सुने ना गाना सर,
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: गायक मीका सिंह बादशाह और नेहा कक्कर, सबसे पहले गीत आपको, केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को, आकाशवाणी ईटानगर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, स्टाफ कर्मचारियों को, सभी दोस्तों भाई बहनों को, हेलो इंटर रेडियो से जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोताओं को ढूंढता हूँ सर। इसका प्रसारण वही मंगलवार को सर
0: 7:35
1: रात को
0: को
1: 8
0: अरुण
1: बजे
0: एफएम में और आकाशवाणी ईटानगर में 8 बजे,
1: शनिवार को शायद 1:10 से 1:15,
0: 1:10, जी 1:10 को होता।
1: ठीक है सर, तो तीनों टाइम सुना दीजिएगा।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। समझे, आगे बढ़ते हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्कार सर जी,
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, कार्यक्रम ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम यादव बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी तुकाराम यादव जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है, आप कैसे सर जी?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: और आपका ईटानगर परिवार?
0: हाँ जी, ईटानगर पूरा परिवार बहुत ही बढ़िया है। और
1: गीत सुना?
0: हाँ जी जरूर सुनाएंगे। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है शोर।
0: शोर।
1: गीत के बोले पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
0: ओहो, पानी बरसा कि नहीं आपके वहाँ तुकाराम जी?
1: नहीं बरसा, इसलिए मैं
0: अच्छा,
1: अभी
0: इसीलिए
1: बरसा चाहिए ना।
0: ओके, इसीलिए आप पानी वाला गाना सुनना चाहते हैं। जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: हाँ सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: हमारे मित्र लोकेंद्र वर्मा जी, गौतम राय बोले जी, गंगाधर सावनकर जी, धीरज भाई रबारी जी, सुनील झा जी, दिलीप पोह जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते सर जी। जी
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर जी।
0: जी सतीश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी
0: आप
1: सर जी, और मेरे जी
0: जी
1: सर और मेरे को सर इतनी ज्यादा खुशी हो रही सर जी कि मेरा ईटानगर में कॉल
0: क्या
1: लगा।
0: बात है। जी, हमें भी बहुत ही खुशी हो रही है आपने हमें याद किया। आपका ये
1: जी,
0: पहला
1: और
0: कॉल है या फिर आपने पहले भी कॉल किया था?
1: नहीं सर, मेरा कम से कम सर ये दूसरा कॉल होगा सर
0: अच्छा
1: मेरा
0: अच्छा अच्छा
1: ईटानगर
0: पहले भी
1: से।
0: आपने याद किया हमें। जी बहुत
1: जी
0: बहुत
1: सर, और
0: धन्यवाद।
1: बहुत ही अच्छा प्रसारण जाता है सर जी मेरा ईटानगर पे, और आपकी जो वार्तालाप होती है सर जी तो हम ऐप के माध्यम से सुन लेते हैं। और ऐसा जी होता है कि सर जी कहते हैं ना कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने सतीश जी।
1: जी
0: तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: सर जी, आप मुझे सुनो दीजिए सर जी, फिल्म का नाम है दिल तुझको दिया, और गीत के बोल रहेंगे सर जी बात।

0: नमो, ये वाला गीत सुना था जी?
1: हाँ जी जी जरूर सुनाएंगे, बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है। और किन लोगों के
0: और
1: साथ सुनना चाहेंगे आप इस गीत को?
0: ये सर सबसे पहले डेडिकेट सर आपको रहेगा,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: और हमारे मित्र हैं सर जी गुणवंत कड़ू जी हैं सर, हमारे लोकेंद्र वर्मा जी सर उज्जैन मध्य प्रदेश से, और गौतम राय भोले जी हैं, आत्मराम पाटिल जी हैं, नारायण प्रधान जी हैं, सत्येंद्र चंचोलिया जी हैं, मुरलीधर ढोले जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति जी सर मथुरा वृंदावन से, और राजू लवानी जी सर आगरा उत्तर प्रदेश, और टेकचंद अग्रवाल जी सर फरासिया छिंदवाड़ा से। इन सभी दोस्तों का सुनना सर जी मुझे चाहिए।
1: ओके, तो सतीश जी हम आपको जरूर सुनाएंगे ये गाना। कॉल करने के लिए बहुत

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार सर,
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ, रंगापारा सोनितपुर असम से।
0: अमल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए, कैसा है हाल?
1: हाल तो आज तो बारिश है यहाँ पर,
0: अच्छा।
1: तो कल बहुत गर्मी थे और हवा भी चल रहे थे। फिर
0: अच्छा
1: रात से बारिश हुआ है, रात जैसे 11 बजे से बारिश हुआ था,
0: अच्छा अच्छा ओके
1: अभी भी टिप टिप बारिश ही है।
0: ओके तब तो बढ़िया मौसम होगा आपके वहाँ पे।
1: जी आप
0: ओके हाँ
1: कैसे हैं? और अरुणाचल में बारिश तो हो रहा है सर।
0: जी जी जी जी आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में सुना भी होगा, बहुत जोरदार
1: हाँ
0: बारिश
1: हाँ
0: हो
1: हाँ
0: रहा
1: हाँ
0: है।
1: मैं तो कोरोना समय पे लगातार सुनते रहते हैं प्रोग्राम,
0: ओके जी जी जी
1: तो
0: जी
1: अरुणाचल के बारे में पता चल ही जाता है।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो बहुत ही जोरदार बारिश हो रही है लगातार।
1: तो आज मैं रान फिल्म से गाना सुनना चाहूंगा, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। चैन हो मेरे दिल का, ये गाना को सुनना है।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना
1: और मेरे
0: चाहेंगे?
1: दोस्त है, दोस्त को नाम देना चाहूंगा,
0: हाँ जी हाँ जी
1: भाईकोन मुंडा है, और बिमोल बसुमतारी, और रमेश पात्र, जोगेंद्र रोंगपी, चंद्रकांत टाइ, चंदिया रानी गगोई, और हरत द्वारा, और प्रणति दत्त, और हमारे भगवान सिंह परमार है, रमेश प्रजापति, और प्रेमजीत चक्रवर्ती, अनंत कुमार भट्टाचार्य, और हमारे लखेंद्र वर्मा जी है, और मंगेलाल चांडिल, और पुरुषोत्तम कुमार, और शिवा लोहार। उन लोग को सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके, इन लोगों के साथ सुनना चाहते हैं आप ये गाना? तो अमल जी,
1: जी
0: कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: जी सर, थैंक यू सर। आप लोगों से जब बातचीत होता है ना, तब बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है। जी, हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग हमें कॉल करते हैं।
1: हाँ
0: जी, इतना बिजी होते हुए भी आप हमें याद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर,
0: जी
1: आकाशवाणी का एक मैं नियमित श्रोता हूँ सर। मैं हरद्वारा बोल रहा हूँ, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर असम से।
0: जी हरद्वारा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए, कैसे हैं आप?
1: सर मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ।
1: और सर वहाँ का मौसम कैसा है?
0: जी अरुणाचल में तो बहुत जोरदार बारिश हो रही है लगातार।
1: हाँ, हमारे में भी यहाँ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।
0: अच्छा, तो बांध पानी वैसा कुछ तो हुआ नहीं अभी?
1: बंद ऐसा नहीं हुआ है।
0: अच्छा, लेकिन बारिश हो रही है।
1: हाँ बारिश हो रहा है जो।
0: खेती के लिए तो अच्छा है बारिश।
1: हाँ खेत में तो, खेत लिए तो बारिश बहुत जरूरी है।
0: जी बहुत ही जरूरी है। जी,
1: हाँ
0: लेकिन ज्यादा होने से फिर बांध पानी वगैरह होता है ना, तब प्रॉब्लम
1: ज्यादा
0: हो
1: होने
0: जाता
1: से
0: है।
1: बहुत तकलीफ होता है।
0: जी हाँ जी, हाँ जी, तो चलिए, अच्छा मौसम है, आप अच्छा है। और तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
1: सर रौदाली फिल्म से भूपेन हजारिका के आवाज में सर गा के दूं क्या?
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गाइए, बिल्कुल गाइए।
1: दिल हम करे घबराए, घन घम

0: ये जी।
1: वाह वाह वाह, हौरत जी आप तो अच्छा गाते हैं।
0: जी जी सर, थैंक यू।
1: ओके, आपने गाना सीखा या फिर ऐसे रेडियो सुन के आप सीख रहे हैं?
0: रेडियो सुन के ही ये गाना गाते हूँ।
1: अच्छा अच्छा, वाह वाह, बढ़िया। ये शौक जो हॉबी है इसको जारी रखिए, अच्छा गाते हैं। जी जी, तो किन लोगों के साथ सुनना
0: ये
1: चाहेंगे?
0: गीतों में डेडिकेट करती हूँ पहले आपको।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और दिनेश शर्मा, निलोत्पल बोरा, देव दत्त, भाईकन मुंडा, विमल बसुमतारी, रमेश पात्र, अमल बसुमतारी और हेलो फरमाइश से जुड़े रहे सभी श्रोताओं के लिए,
1: सभी को आप सुनाना चाहते हैं।
0: हाँ
1: जी
0: हाँ
1: तो हरत जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपका पसंद का गाना रुदाली फिल्म से।
0: जी जी सर, थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: सर जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं हम।
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर। तो सर, मैंने आज फिल्म परछाइयां का गीत सुनना है।
0: परछाइयाँ।
1: हाँ जी, परछाइयां।
0: ओके। और गाने के बोल।
1: रफी और आशा जी की आवाज में है।
0: जी
1: गाने के बोल मैं दो लाइनें तरन्नम में
0: जी
1: बताता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी।
1: सासों

0: बैरी हो तो क्या तुम हमसे वफा करना।
1: वाह
0: ये
1: वाह
0: सुनवा
1: वाह,
0: दें
1: बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है परछाइयां फिल्म से। तो पहले आपका परिचय हो जाए।
0: सर जी। मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ सर।
1: जी जगदीश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना बढ़िया गीत आपने चुना है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी सुनेंगे आपके साथ, और किन लोगों को
0: धन्यवाद
1: सुनाना
0: सर,
1: चाहेंगे आप?
0: धन्यवाद,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: बहुत धन्यवाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता दोस्तों, आपने सुना प्रोग्राम हेलो फरमाइश। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: दिल से दिल तक बात पहुँचे, मिलते मिलते सनम हो।
3: गीत संगीत,
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात,
3: बस आपके नाम।
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanae Takaichi, in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India-Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: The Prime Minister also informed that in the field of defense today, both nations have signed an agreement on the first co-development project between India and Japan.
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 marks a major step towards ensuring employment, strengthening rural livelihoods and accelerating the development of villages across the country. Union Minister for Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan has said. Union Minister Sri Shivraj Singh Chauhan along with Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu today launched the VBG Ramji Act at Mukhavaripalle village in Tirupati district of Andhra Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Chauhan said the scheme aims to ensure that no poor labourer remains without work and that every hand gets employment. He thanked Prime Minister Narendra Modi for introducing the scheme and said employment under the programme has been enhanced from 100 days to 125 days.
2: मनरेगा में केवल
3: अंडर मनरेगा वर्कर्स यूज्ड टू गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर ओनली 100 डेज पर अंडर द विकसित भारत जी राम जी योजना लेबरर्स विल रिसीव एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फुल 125 डेज इन द वेरी फर्स्ट ईयर द सेंटर्स कंट्रीब्यूशन टू द स्कीम अमाउंट्स टू 95,600 करोड़ रुपीस विद द स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग देयर 40% शेयर अ टोटल ऑफ 1,51,282 करोड़ रुपीस विल बी स्पेंट इन जस्ट वन ईयर
2: 282 करोड़ रुपया
0: Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today underlined that the government is promoting ease of living while ensuring environmental protection through policies that balance development with sustainability. Addressing a national conference on electric mobility, Mr. Yadav said the government's approach reflects Prime Minister Narendra Modi's vision of ensuring that ecology and economy grow together. He highlighted that despite rapid industrial development, the country's forest cover has increased from 7,1673 square kilometers in 2014 to 7,15,000 square kilometers. The Election Commission today announced the schedule for by-elections to three Legislative Assembly constituencies across Bankipur in Bihar, Datia in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat. The polling will take place on the 30th of this month and the counting of votes will be conducted on the 3rd of next month. The National Rain-Fed Area Authority-funded Wild Rice Conservation Project has achieved a major milestone in Assam. The Borjuli site in Sonitpur district has been notified as a biodiversity heritage site by the National Biodiversity Authority under the project. The project, titled In Situ Conservation and Management of Wild Rice, Oriza Rufipogon, in Sonitpur district of Assam, aims to protect wild rice in its natural habitat. The recognition is an important step towards conserving India's rich wild rice diversity and promoting climate-resilient agriculture. Minister of State for Home Nityananda Rai today attended the flag-in ceremony marking the success of the Mount Everest and Mount Lhotse mountaineering expeditions by the Border Security Force, BSF, Indo-Tibetan Border Police and National Security Guard in New Delhi. Speaking on the occasion, the minister said by conquering the world's highest peak and singing Vande Mataram to the skies, the all-women mountaineering team of BSF has set a rare example of grit, patriotism and dedication. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. India's long-standing proposal for the Comprehensive Convention on International Terrorism has received renewed support at the United Nations General Assembly. The ninth review of the UN Global Counter-Terrorism Strategy, adopted by 140 votes, has urged member states to make every effort to finalize the convention proposed by India over three decades ago. Addressing the UN General Assembly, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said the absence of a universally agreed legal framework weakens global counter-terrorism efforts. He stressed that there should be no double standards in tackling terrorism and called for holding perpetrators, financiers and sponsors accountable. He added that a terrorist is a terrorist and emphasized that counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
4: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
0: The first batch of 4,822 pilgrims for the annual Sri Amarnath Ji Yatra was flagged off by Lieutenant Governor Manoj Sinha from the Bhagwati Nagar Yatri Nivas base camp in Jammu today amid elaborate security arrangements. Pilgrims from different parts of the country have been arriving in Jammu to take part in the sacred pilgrimage. The southwest monsoon today has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. Refreshing showers in the national capital provided much relief from hot and humid weather. The weather department has forecast thunderstorms accompanied by rain over many parts of the national capital during the day, with generally cloudy skies expected to prevail. A yellow alert has been issued for parts of western and central India for heavy rainfall. People in Uttar Pradesh got much needed relief from the scorching heat as the monsoon arrived in the state, with almost all parts of the state witnessing rainfall. A report.
5: The southwest monsoon officially entered Uttar Pradesh on Tuesday with the monsoon trough passing through Azamgarh, Bareilly and Ayodhya districts. Several parts of the state recorded moderate to heavy rainfall over the past 24 hours, bringing much needed relief from the prolonged heat. Sultanpur, Muzaffarnagar, Badayun, Saharanpur and Sambhal witnessed very heavy rainfall, disrupting normal life in some areas while significantly bringing down daytime temperature. The rainfall has come as a major relief for farmers who had been anxiously waiting for the monsoon as paddy sowing was already running behind schedule. The meteorological department has forecast heavy rainfall in many districts today and said that weather conditions remain favorable for the further advance of the southwest monsoon across the state. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: Heavy rainfall continued across Maharashtra for the second consecutive day today, disrupting normal life in several parts of the state. More from our correspondent.
6: According to the IMD, Konkan and adjoining Ghat areas of central Maharashtra are likely to receive heavy to very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places. In Mumbai, heavy showers inundated low-lying areas, slowed traffic and disrupted suburban train services on some routes. The Pavai Lake has started overflowing following continuous rainfall. The University of Mumbai has cancelled examination schedule for today for colleges in Palghar district and under the Panvel Municipal Corporation. Schools in Palghar and in Raigad, some talukas including Alibag, Panvel, Uran, Srivardhan, Masla, Tala and Polatpur have also remain closed today as a precautionary measure. Fishermen have been advised not to venture into the sea. Nivedita, AIR News, Mumbai.
0: A powerful storm swept across Romania's capital Bucharest and 20 counties yesterday, leaving one person dead and causing widespread damage. Emergency services said nearly 2,000 calls for assistance were received in Bucharest alone, where several metro stations were flooded. The storm also affected around 60 towns and villages outside the capital, damaging dozens of homes and vehicles. In Ukraine, 13 people were killed and dozens of others injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kiev as part of a broader wave of Russian overnight attacks. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002. This morning, they defeated Bosnia-Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, where they will take on Belgium. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also entered round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
7: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
7: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
4: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
8: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को

0: नीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को

0: अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आइए अब सुन

श्रोता दोस्तों, आइए आप सुनते हैं जिगर फिल्म का ये गाना। जिगर फिल्म बनी थी 1992 में, मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म है जो फारूक सिद्दीकी द्वारा निर्देशित है। ये फूल और कांटे के बाद अजय देवगन की दूसरी ये हिट फिल्म थी। इसके गाने भी बहुत सालों तक पॉपुलर में रहे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s में। हिट्स ऑफ 90s में आप जो अभी सुनने जा रहे हैं वो है फिल्म ताल। जी हाँ, ये ताल फिल्म बनी थी 1999 में। इसका सह लेखन, निर्देशन और निर्माण सुभाष खरे ने किया और इसमें ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना, अनिल कपूर, अमरीश पुरी और आलोक नाथ अभिनय में है। और ये फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरीके से सफल रही थी और साथ ही इस फिल्म में बहुत सारे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी जीते, जैसे कि ए आर रहमान को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार, साथ ही अनिल कपूर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला इस फिल्म में, और आनंद बख्शी को इश्क बिना के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला, और साथ ही अलका याग्निक को ताल से ताल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला। पर आज जो हम गाना सुनाने जा रहे हैं आपको, वो है रमता जोगी। जी हाँ, रमता जोगी ये सुखविंदर सिंह एवं अलका याग्निक की आवाजों में है।

0: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also, avoid entering the river bed to collect sand, stones, or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings, or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay, or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: दोस्तों आप हमारे साथ सुन रहे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. जी हां, ये फिल्म बनी थी 1995 में. इस फिल्म ने भारत में 58 करोड़ रुपए जबकि विदेशों में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी. विदेशों में ये हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है. इस फिल्म का किसी भी सिनेमाघर पर सबसे ज्यादा समय तक चलने का इसने रिकॉर्ड किया है. मार्च 2009 में इसने मुंबई के मराठा मंदिर में 700 सप्ताह तक चलने का ये रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले ये रिकॉर्ड शोले के नाम था जो करीब 5.5 सालों तक एक ही सिनेमाघर में चली. अपने पहले प्रदर्शन के 20 साल बाद 2019 तक ये अभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा था. तो आइए इस फिल्म का ये गाना सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में.

0: श्रोता दोस्तों, आपने सुना हिट्स ऑफ 90s। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइन, उसके बाद आप सुन पाएंगे मिस मी श्रोताओं का कार्यक्रम, उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे ताय खामती श्रोताओं का कार्यक्रम, उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे 3:30 पर प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट के साथ।
1: This is Hage Ani. Today's headlines are: India-Japan signs several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals, AI. India approved its first satellite-based landing procedure for helicopter operations. Civil Aviation Ministry says it will be beneficial during adverse weather conditions and in areas where ground-based navigation aids are not available. People of Venezuela express appreciation for the Indian medical team under Operation Amistad for providing treatment to those affected by the devastating earthquakes. Central government notifies employees Provident Fund Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952, aimed to strengthen digital compliance, improve administrative efficiency, enhance portability of accounts. Government issues notice to Meta regarding the rollout of the username feature on WhatsApp in India. Directs Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. Union Home Minister Amit Shah pays tribute to Dr. Sonilal Patel on his birth anniversary today. Health Minister Jagat Prakash Nadda chairs high-level review meeting on dengue preparedness in Delhi yesterday. Election Commission announces schedule for by-elections to 3 Legislative Assembly constituencies across Bankipur in Bihar, Datia in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat. Government refutes digitally manipulated video of former Army Chief General Upendra Dwivedi circulated on social media by Pakistani propaganda accounts. India and Malaysia review entire spectrum of bilateral military cooperation during the 12th subcommittee meeting held in New Delhi yesterday. India in direct talks between Iran and the US through mediator conclude in Doha yesterday. Both sides agree to continue discussions after the funeral ceremonies for Iran's former supreme leader Ali Khamenei on July 9th. That's all in this news headlines. Namaskar.
2: Anja or India Radio Itanagar donga bajik samsamla faikmankin program phola donga tarakjin ya tanglai ka lawan hingjin talmo tam ke donga lai songkhrai mang bisam sam sam grat jongsan khit keng ya chining kin Japan nang India anja na tarolong tara long prong ku tong set samlong rashan kamlam set ga jong ku jong kang set kam samlong jaban de fi hi kin India la Prime Minister Narendra Modi nang Japan helaniam le Prime Minister Sanai Takaichi nang Annual Summit Dom Tom Jan New Delhi Crit Kramaning Tangramaning Kantala Natsil Tower and Jal Crit Kronik Tangronika Kitten Rangi Rangura Tut Mangrad Mataro Long Tara Long Song Line Kan Long Jam Sandam Mixed Prayneka Tangmaning Kantala Natsil Tower and Jan meeting Jalang Ronyam Leviching Hira Rukronika MOU Dom Tom Memorandum of Understandings Dom Tom Jawan Sign Katning Kantala Natsil Tower Tokin Nyamle Rust Rastrapati Bhavan Langa Hawaii, Prime Minister Hila Japan Hila Hula, he and Jalak welcome Gagadoronigan Talada, Siltaka, and Jan welcome Kantavan Jagalak Nyam Nikin, Prime Minister Narendra Modi Nehushi Gadonega, Dalada, Siltaka. Ranjanang Kin Kaningatakaning, Kin Japan and India and Kantaring, Kamlam Samang, Gratzong Kutsong, except Bronkutong, Ladmang, Sotonega, Gratzong Kutsong, Sartem Totonega, Kai Tauka. Nyamle Union Minister Agriculture nang nyamle farmer dom taun jawan nyamle Shura Singh Chauhan mujanga hoi kin Arunachal Pradesh Governor Keti Patnaik ka Lok Bhavan Itanagar lag mongne ka to kib alag awang tin tan kadman jawan te fi hi ahi brongko tong to la chongsen thum la ra bei gar rai la jawan tangin te fi hi mongne ka kritga ka ta ka to ne gan ta la da khai tha ka ran jalang ta ne ka tha tha ka to kib nya inyo rai la brong tong rai la chong sin thum la unjawan kang shauk set kam lam takat na long jawan dam hi pre ka ning do ne gan da la nat sel thau ka ran jaling thau tha ka kin governor ka atmanirbhar अरुणाचल विकसित अरुणाचल विकसित भारत में जावन कांग सामन टिफी है कि अरुणाचल अंजारा ना एक्सेट कामलाम का कट फुटा हूँ जाम ही आइला तुल हले या हम मोपाई कंडाई पिचन मन में जावन फिश निंग दोने का दिकाह ते का दोने का दाला दात से थाव का प्रांजालंग के तागने का हैला तुल हला कला शिवराज सिंह चौहान का थाव था का कि अरुणाचल प्रदेश अंजालंग वन कुंभ नाम ग्रात सोन गुड सोंग अक्सर कामलाम सब लोग जावन दिफी है सेंट्रल हला नहीं या हम मो तुल मंडान पाई कंडाई दिफित समांग दोने का थाव का ना दाला दा क्राइ थाव का अचीब निष्ठा पेमा खांडो का तो कि अवांग ते तक चार सो का हिंग्रात ग्रुप पुराई लावरा ईसियांग डिस्ट्रिक्ट वाला लेकि पन्नो डिस्ट्रिक्ट में जाऊं रहे लाऊं जावन दफे ही तंगीन दफे ही न्याम ले एसडीआर अपना एनडीआर अपना मुझावन भी अवर ने का शाओ तो तत्र अनालों मुझावन डाम ही अवन हत्या का तो निकंदा लड़ा चल था होगा किन अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडो मुझावन आकाशवाणी भी तांगने का था उठा का ही की पन्नो डिस्ट्रिक्ट ईसियांग ले मुझावन संवाद फी ही तुलहला कला शिवराज सिंह चौहान किरण रिजिजू मुंजाम सन्नी होगा तब रंजान वन किन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ब्रांड बुक्स ब्रोंगो तो रहे लम चौंसिन थोप ला ग्रांड ग्रोंग रहे लम जावन थो चनक डोने का ब्रांड बुता मुंजावन टीवी हिंग हिंग होगा निंग मुंजाम ही हला कहते तन मंग पान मोरा तो होगा निंग माले करा ग्रांड चौंगो चौंग का शन रहे ला ता ला रंपे ग्रांड का था ब्रोंगो तो का था मुंजावन एक सत तत्रा नहीं प्राइम डोने का ता लंदा खेगा नचल था होगा प्रण्याम ले यूनियन मिनिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन न्याम लेकला ज्योति आदित्य सिंधिया का ने किन चीफ मिनिस्टर पेमा खंडो भी इन चाल ब्रोंग तोंग तो लाउन जावन दफी ही सत काम लाम कचिन किने का विका के ता पो करा अन चाल शाम मो सात फिर चत मो किन ने पिमाइन रने का थाव का ना दाल ना चल थाव का रतो न्याम ले किन इंडिया अपुलक डीएस अपुलक न्याम ले एसआईआर डोम द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन डॉम तम जावन समन दफी हिंगा वे डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर टावांग हाई नमग्याल अंगमो का शाम पॉलिटिकल पार्टी चाउ डॉम जाम छन वी इन जान काम लंग सित का ये दोने का मुंग ने का कता का दोने का दाला नत सर था का रन जान समन दफी हि किन डिप्टी कमिश्नर का था था का शाम पॉलिटिकल पार्टी चाइ मने रंगरा चोंग गुर चोंग सित काम लंग सम ले उंजावन दाम हित्रा शिन दोने का कहते का ना सर था का रंगा हो भाई इंग्लैंड ने इंडिया ने क्रिकेट मैच टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच खिलीम दाउन जावन दफी ही गा हो भाई किन इंडिया ने खिलीम दाउन जावन लंग इंडिया चन बेटिंग का तो ने गंदा ला ना चल था और अंजा इंडिया बेटिंग का तो मारा वांग चन सोला दफी ही इंग्लैंड ने बेट में करने जावन दफी ही तो मैच जावन जीरो जीरो संभलाव ही अराला इंडिया रला बेटर न्याम ने श्रीयास आईआर का वन पूरा कंदाम मुंगन रन मुंजावन बिशिमो नन बोल हिद्रा का तो नहीं गंदा लड़ा चल था का उरा फीफा वर्ल्ड कप समन मुझे वालंग न्याम ले बेल्जियम का न्याम ले 3-2 का स्नेगल विपिए का तो नहीं गंदा लड़ा चल था का उरा तो कमान किन लाइक और सॉन्ग अन सॉन्ग लग पहला तो किन कमान तो जाए ग्याचुनिंग जाए मंग अन किट्स ओ क्री

आप सुन रहे थे ताए खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप श्रोता बने हुए हैं हमारे साथ प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट में, और साथ ही हम सुनेंगे हिंदी फिल्मी गाने। बॉलीवुड अपडेट में आइए चलते हैं बॉलीवुड की खबरों की ओर। दिलजीत दोसांझ ने अपने गोल ब्लैडर में 11 से 12 एमएम की पथरी होने का खुलासा किया है, जो उन्हें 2015 में पता चली थी। दिलजीत ने बताया कि उन्होंने ये बात सालों तक फैमिली से छिपा कर रखी।

पिक देखा, फिल्म में उन्हें हीरो से भी ज्यादा प्यार मिला, मगर एक्टर ने इस सक्सेस का असर खुद पर नहीं होने दिया। इसका खुलासा फिल्म इक्का बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने किया, जिनकी नई फिल्म में अक्षय दिखने वाले हैं। रामायण के टीजर पर बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, जब उसमें खराब विजुअल्स देखकर लोग दंग रह गए, मगर अब एक कंटेंट क्रिएटर का दावा है कि फिल्म के मेकर्स ने जानबूझकर खराब वीएफएक्स वाला टीजर जारी किया ताकि फिल्म सुर्खियां बटोर सके। फिल्म ईटा रिलीज होने से पहले सुर्खियों में बनी हुई है। इसके टाइटल पर विवाद हो रहा है। बीटाबाई के परिवार ने ईटा टाइटल पर आपत्ति जताई, जिस पर अब एक्टर अनंत जोशी ने रिएक्ट किया। अक्षय के फिल्म वेलकम टू द जंगल ने 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर डाली है। 2 दिन पहले शानदार मंगलवार के बाद बुधवार को भी फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है। इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इसे काफी पसंद किया जा रहा है।

दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट में। और आइए बॉलीवुड की खबरों में आगे जानते हैं। सोहेल खान ने उम्मीद जताई है कि वह कुणाल खेमू के रियलिटी शो द अलायंस में जाकर खुद की पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। वे इस शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री जाने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने अंदर जाने से पहले मीडिया से बातचीत में ये सारी बातें कही। स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म अल्फा इस शुक्रवार यानी कि 3 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। बॉलीवुड में ये फिल्म फीमेल लीड एक्शन फिल्मों का डिजाइन बदल सकती है, लेकिन आलिया से एक दशक पहले एक एक्ट्रेस ने ऐसा एक्शन किया था। धमाल फॉर एक्ट्रेस अंजलि आनंद ने फैट शेमिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि लोग उनसे पूछते हैं इतनी मोटी होकर भी काम कैसे मिल रहा है। अंजलि ने ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए कहा कि काम टैलेंट से मिलता है, साइज से नहीं। अल्फा के रिलीज के बीच दर्शकों की नजरें फिल्म की दूसरी लीड एक्ट्रेस शर्वीर पर टिक गई है। साल 2021 में बंटी और बबली 2 से फ्लॉप शुरुआत करने वाली शर्वीर के लिए साल 2026 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। मैं वापस आऊंगा और अल्फा के बाद उनके पास इस साल एक और फिल्म भी है। तो आज के लिए ही बॉलीवुड की खबरों में इतना ही। आप सुन रहे थे हमारे साथ प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे वांचो श्रोताओं का समाचार।

आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज तथा DRN 666 किलोहर्ट्ज पर। इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम। और आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब समय हो चला है प्रोग्राम हिंदी फिल्मी गानों का, तो आइए आज सुनते हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म के चंद गाने। तो लीजिए, पहला गाना पेश है श्रेया घोषाल एवं अमाल मलिक की आवाजों में।

आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना। आप हमारे साथ बने हुए हैं हिंदी फिल्मी गानों के प्रोग्राम में और हम सुना रहे हैं आपको आज बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म के गाने।

सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर। आइए सुनते हैं ये गाना अखिल सचदेवा एवं मंशिल गुजराल की आवाज में।

0: वजह का सेंटर में आम आरोजी ना ने गवर्नर में लगाने अतिकाची पाकु पड़ा जो चु पैं भयो जो लाकोजिया में आनंबर में भी जो का पैं जीवन शादा ने यूनियन मिनिस्टर को लाद बादा आओगा गवर्नर में लगान तजी पुआ सेंटर में अतु तेहा पुगा उदा ने यूनियन मिनिस्टर में लगा महो अली ची जगा पाओ मिनिस्टर में इटानगर ची लॉकडाउन में बोकुल आसीबागे ली ओगे बादा आहोगा लिबाचा ब्रुरु आदुगी मा काजी गए आंतोड़ा बा आतु सुगा जी दा ने चीफ मिनिस्टर पे मकान में बुनी ला होगा ने आ पोची रिपोर्ट आजो आज तेनुगा बापा हो आ रिपोर्ट आजो पो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हाँ गया उदा ला होगा ब्रुरु मा तातेगा बंदो एसडीआरएफ ने एनडीआरएफ में आरोगा दा ने चीफ मिनिस्टर में ला होगा महो यूनियन मिनिस्टर कानी शिवराज सिंह चौहान ने किरण रिजिजू में चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अतुगे ने बुनी इसियांग ने कई पन्योर डिस्ट्रिक्ट याजली तो ने इकिशा बुरुगा ममा ची इमुआ नंबो को ची चाहे बता आहोगा प्राइम मिनिस्टर में अली रुगा मिंगा मा अरुवे उतेगे ने यूनियन मिनिस्टर कानी शिवराज सिंह ने किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश मा आएगा दा ने चीफ मिनिस्टर में लगाता आहोगा आमहो यूनियन डोनर मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया में बुनी चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को जगह ने ब्रुग में अरुणाचल प्रदेश मा का जगह आतोड़ा बा ताहुगा दा आहोगा तवांग डीसी दो ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नामग्याल आमो में बुनी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एसआईआर ची पो मीटिंग जिनेगा मा तवांग डिस्ट्रिक्ट मा चे पोलिटिकल पार्टी मा चे लीडर आरंभो गो ची जगह दा आहोगा एस आर अखगा जिमा पोलिटिकल पार्टी अनुभव तो ने आरोजी बोथ लेवल एजेंट अनुभव में आरोजी नाने देशी में लगाने अतिकाची इमु के बने बोर्डर सुपुमा आमु अखाजी के बने ब्लॉक लेवल ऑफिसर बी एल ओ अनुभव आरोजी ना लगाची दा आहोगा इशियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट मचे अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अपू अजितेला कपिनुबा इन्हें है बुनी नगा महो आ यूनिवर्सिटी माचे आहिया आजो आही तोया दोने किसा स्थापा नंबर में स्पोर्ट्स टाउन ना पगे उखो प्रोग्राम मा खिम बेंदेगा दा आओगा अपू है बहा इनु एजर के आ निहो कानी माचे नु अचला पुची अला मैं माचे नी अजितिगा बची दा लगा ओना इंग्लैंड माचे चेस्टर ले स्ट्रीट मने इंडिया ने इंग्लैंड एबगा मैं नंबर चे टी ट्वेंटी क्रिकेट इंटरनेशनल मैच अखपगा बमा इंडिया में है होगा ने अन्य ओवर मा इन विकेट एबोबाए के ने माओ यूरो खीनी रन हुतिगा बची में इंग्लैंड में हो सो दाओ आयो तो बने मैच अनेगा बदा आहोगा और नच मैच मा श्रेयस आयर में प्यान दो कपिहु इन बॉल मा तारहु यू रन हुतिया बची मा हो मंगा मैच सीरीज मचे इमता बुगची मैच है अनांगा मैनचेस्टर हतिको ने अखगाव दा ला होगा फीफा वर्ल्ड कप मा पुनी इंग्लैंड में डीआर कांगो है कानी खेगे गोल माने अनेगा बमा हो और नचे मैच मा बेल्जियम में सेनेगल है कासो कानी गोल माने अने ऐ तो ने अमेरिका में बोस्निया हर्जेगोविनिया है कानी जेरो गोल माने अनेगा बदा आहोगा ऐतनी ची इदुमिस्मी आहो अलीमाओ दबाए ऐचा आकाशवाणी ईटानगर दिव्यगढ़ नाले इदुमिस्मी प्रोग्राम मा ऐचंता आशे अनुसो किया माहो ऐतनी हैंडो
1: ऐपे पुलुची चाशे ची अनुची
2: आप सुन रहे थे इदुमिस्मी श्रोताओं का समाचार। इदुमिस्मी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर अथवा 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं इदुमिस्मी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। और आइए अब सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने। आइए सुनते हैं साथ ही द कंपेनियन फिल्म के चंद गाने। तो लीजिए पहला गाना पेश है कुमार सानू एवं श्रेया घोषाल की आवाजों में।

सुना ये गाना उदित नारायण एवं प्रिया भट्टाचार्य की आवाज में। आइए सुनते हैं ये गाना। आप सुन रहे हैं हमारे साथ साथी द कंपेनियन फिल्म के गाने।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गाने। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से श्रोताओं हमारे दूसरे प्रसारण के प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे प्रसारण अधिकारी पंचानंद डोले, तकनीकी अभियंता एचएम भूषण और स्टूडियो तथा एचपीटी पे मौजूद सभी सहकर्मी। और अब से थोड़ी देर बाद आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर आरजे अपर्णा के साथ। तो मुझे आपकी रेडियो साथी कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हैव अ गुड टाइम अहेड।

kamung nang rafan tu ngoro tu. Perju governor ramaso fan tenang state nang infrastructure per seheng rau organic farming per promote kuri rau perma modern technology lamban rau arau market connectivity per amai takyang rau ju per rural economy per amai kajang si jam आत्मनिर्भर अरुणाचल विकसित भारत नई विकसित भारत विजन ममन करम कुचिंगो मोराउ गवर्नर फांत परजु अचोंग को बेनवांग एग्रीकल्चर मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट म नई एग्रीकल्चरल ग्रोथ म फुल सपोर्ट करम कुचिंगो राउ काखम कुतंगो रो त स्टेट नंग खामपंग न्योप्त एरिया नंग मचौ ग्राउंड असेसमेंट कुरी कटा आरव परप तशेरे यु सेंट्रल गवर्नमेंट म डिटेल्स रिपोर्ट प कुत थोकचिंग मराव मनै अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू र रोक्त आरव रिलीफ असिस्टेंस हाई प एसडीआरएफ नै एनडीआरएफ नॉर्म्स मा म कुशी मराव चीफ मिनिस्टर खांडू र रोक्त यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान नै किरण रिजु जाम म केई पान्योर नै ईस्ट यांग डिस्ट्रिक्ट नंग खामपंग तो जगह ताम एरियल सर्वे कुरीवांग तनंग चीफ मिनिस्टर खांडू र आकाशवाणी म रोक तनंग अपंग इंफ्रास्ट्रक्चर बात परजु हाईवे नई रोड लंप बावन चेई तनंग स्टेट म सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट रा रंग रो चीफ मिनिस्टर खांडू र रोक त अर उपर खाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान नई किरण रिजिजू प अरुणाचल प्रदेश नंग खामपंग त एरिया नंग थवांग त मुराउ चीफ मिनिस्टर खांडू र फान त परतुंग डोनर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया र मनई चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू म खम लेम त कमुंग नंग र फान त मुरो त परजु यूनियन मिनिस्टर र खामपंग त जगा नंग मछो रेस्क्यू रिलीफ काम मबांग मान प पत अराउ परजु डोनर मिनिस्ट्री र वसरप जांगची सपोर्ट प कुची मोराउ का खाम कुत मोरो त मचो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कम सोम र कमुंग नंग रफान म मनै तावंग डिस्ट्रिक्ट वांग डीसी कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नामग्याल आंगमो र डिस्ट्रिक्ट वांग वसरप रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी ताम वांग रिप्रेजेंटेटिव्स हेंग जाम म मीटिंग कथुंग त मोरो त परजु डीसी र मीटिंग नंग टोंग थोक तो बन म मसो फान रो मई हम हम नंग बूथ लेवल ऑफिसर हिंग र वेरिफिकेशन कुरी कर नंग नई एनुमेरेशन फॉर्म कचोम कर नंग पार्टी वंग बूथ लेवल एजेंट र बूथ लेवल ऑफिसर हिंग म करुम नंग रंग मुराउ वसड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ताम मरु त परम जुवा एलिजिबल वोटर्स हिंग प लामराउ इलेक्टोरल रोल प रखक जांगची अरो ट्रांसपेरेंट नई एरर फ्री जंगची मोराउ तावंग वंग डीसी कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नामग्याल आंगमो र फांत अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एपीयू र मनई पासिखा नंग लगबलई फोर्थ फाउंडेशन डे सकान पर सरिंग त पर यूनिवर्सिटी पर पांग हजनई रा खुरनई पांग जुलाई जलिंग रंगसी तारीख नंग खे फांग त अरे ऊपर ओकेजन नंग यूनिवर्सिटी वंग फैकल्टी मेंबर हेंग स्टाफ नई लिवन पर तों थोक तंगो रोक त इंडिया ने इंग्लैंड तुंग थला मेंस क्रिकेट टी ट्वेंटी मैच मचूसा चेस्टरली स्ट्रीट नंग तो तप रंगजन राम तंगबा त अरे मचू वांगसी दुबार रंग क्रोक्सा नंग मैनचेस्टर नंग सेकेंड टी ट्वेंटी मैच पर तो सिंगो रोक त अरे फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल तो रनंग बेल्जियम र सेनेगल प अरोम गोल मचे रो राउंड 16 म क्वालिफाई कयांग त पर म यूनाइटेड स्टेट र मशोरनाप अफंग पन मेस प चेई द पर जो बोस्निया हर्जेगोविना प अनै गोल म चेई रो राउंड 16 न थोक त अरो पर राउंड नंग यूनाइटेड स्टेट र बेल्जियम जाम मसो तो छि रुंगरांगै तानंग थुम र

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तांगसा समाचार। अगर आप हमारे तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि मित्रता करने में धीमे रहिए, पर जब कर लीजिए तो उसे मजबूती से निभाइए और उस पर स्थिर रहिए। आज इस पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरे प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके इस चंद लम्हों के खूबसूरत सफर में आपके साथ मौजूद रहेंगे संचरण निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और एचपीडी में मौजूद सभी साथियों के साथ मैं रहूंगी आप सभी की अपनी आज है अपर्णा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी कार्यक्रमों की शुभारंभ करें, इससे पहले हम अपनी जो आर्जित कविता है उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं जिन्होंने अपने सेकंड ट्रांसमिशन के दौरान आप सभी की भरपूर एंटरटेनमेंट की है और मुझे जाते जाते स्टूडियो हैंड ओवर करके गई है। तो थैंक यू आरजे कविता आपका। तो दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे गुड इवनिंग ईटानगर के सेगमेंट के साथ। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
4: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी।

0: चाहूंगी क्योंकि आज बहुत ही एक खास दिवस है, एक नहीं दो दो। जी हाँ दोस्तों, 2 जुलाई विश्व में यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस को हर वर्ष 2 जुलाई को ही मनाया जाता है। आप में से बहुत लोगों को यह पता होगा जरूर। इस दिवस का उद्देश्य अंतरिक्ष में अज्ञात उड़ान वस्तुओं और ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति लोगों में जिज्ञासा और जागरूकता बढ़ाना है। यूएफओ ऐसे उड़ने वाले पिंडों को कहा जाता है जिन्हें तुरंत पहचानना संभव नहीं होता। विश्व यूएफओ दिवस लोगों को अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान और खगोलीय घटनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं और रहस्यमय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये दिवस विज्ञान, कल्पना और खोज की भावनाओं को बढ़ाता है। जी हाँ, यह दिवस हमें ब्रह्मांड में विशाल रहस्यों को समझने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा भी देता है। अंतरिक्ष अनुसंधान मानव ज्ञान और तकनीकी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य खेल पत्रकारों के योगदान और खेल जगत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देना, खेल पत्रकार खिलाड़ियों, प्रतियोगिताओं और खेल से जुड़ी घटनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कार्य करते हैं। है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात। तो चलिए अब हम आपको कुछ नगमे सुना देते हैं, एंजॉय कीजिए।
1: और मम्मी।

0: दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारे आज के गुड इवनिंग ईटानगर के ये सेगमेंट जो है अब यहीं पर संपन्न होती है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल, आपसे बस कुछ ही देर में आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल और एआई सहित कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक से मुलाकात की। आकाशवाणी से बातचीत में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीन स्तर पर आकलन किया जा रहा है और इसके पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। और फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली बार जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगला को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया और आज रात 12:30 बजे से स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के समय में सामूहिक विकास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा है कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई दिशा मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच वैश्विक रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुनः सुने, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी परनायक से मुलाकात की। बैठक में हालिया बाढ़ से हुए नुकसान के साथ साथ सिंचाई, संपर्क व्यवस्था और ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने, जैविक खेती एवं उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने, कौशल विकास, कृषि प्रौद्योगिकी तथा बाजार से बेहतर जुड़ाव जैसे विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सतत एवं उच्च मूल्य वाली कृषि का प्रमुख केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा है कि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, आधुनिक तकनीक अपनाने और बाजार से बेहतर संपर्क स्थापित करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा आत्मनिर्भर अरुणाचल, विकसित अरुणाचल और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी। राज्यपाल ने किसानों को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने हेतु आधुनिक तकनीक, कौशल विकास, कृषि स्टार्टअप और मजबूत बाजार संपर्क की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल प्रदेश के विकास और कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग और सहायता आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीन स्तर पर आकलन किया जा रहा है और इसके पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के मानकों के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान की जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं किरण रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित कई पान्योर और ईस्ट सियांग जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के सहित बड़े आधारभूत ढांचे को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए राज्य को केंद्र सरकार की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान एवं किरण रिजिजू को अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की सलाह दी। इस बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डॉनर के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से टेलीफोन पर बातचीत कर राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बचाव, राहत और पुनर्बहाली कार्यों सहित जमीन स्तर की जानकारी ली तथा मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों वाली द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी राजनीति को 9 वीक समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि सर्वमान्य कानून ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने से दोहरे मानदंड न अपनाने और पर बल देते हुए अधिकारियों से वित्त पोषित और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फॉर डिकेड्स।
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित

0: बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: वी मस्ट एड्रेस द कंडीशंस कंड्यूसिव टू द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म।
2: केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज कहा है कि भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक दूसरे से तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद से पहली जीत दर्ज की है। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं आज रात के मुकाबले में रात 12:30 बजे से स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रामीण विकास कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तिरुपति जिले के मुकाबिरपल्ले गांव में विकसित भारत श्री रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा है कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रह जाए और सभी को रोजगार मिले। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकित आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों के असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashwani. The news read by Hage Ani. India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense, and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and India and Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries. He stressed both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that the technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, marks a major step towards ensuring employment, strengthening rural livelihoods and accelerating the development of villages across the country. Union Minister for Rural Development, Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, has said. Union Minister Shivraj Singh Chauhan, along with Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, today launched the VVG Ramji Act at Mukkavari Palle village in Tirupati district of Andhra Pradesh. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupinder Yadav today underlined that the government is promoting ease of living while ensuring environmental protection through policies that balance development with sustainability. Addressing a national conference on electric mobility, Mr. Yadav said the government's approach reflects Prime Minister Narendra Modi's vision of ensuring that technology and economy grow together. The Election Commission today announced the schedule for by-elections to 3 Legislative Assembly constituencies across Bankipur in Bihar, Datia in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat. The polling will take place on 30th of this month and the counting of votes will be conducted on 3rd of next month. The National Rain Fed Area Authority funded with Rice Conservation Project has achieved a major milestone in Assam. The Borjuli site in Sonitpur district has been notified as a biodiversity heritage site by the National Biodiversity Authority.

aya akashwani itanagar cha thursday kinina july dia haje kini yau kini sro yang amanne jembang ro bangachu me jentu munya japan prime minister sanai takaichi ya india ne mija jembang lalo yua prime minister narendra modi ya japan prime minister kalam sok mija rashtrapati bhavan hum ya chutlo kar taluka जापान से इंडिया से ने कछु किमी मतों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जापान प्राइम मिनिस्टर सनाई ताकाची या चा वाशिक कुति चुनजों करे बैदा जापान प्राइम मिनिस्टर या इंडिया ने नपक्रूम नपक्रूम तुंग तल्या अधे न्यागा ताकाची या जापान प्राइम मिनिस्टर कहां बिमा इंडिया ने आया कपंगलयू अरुणाचल ने कई पानी डिस्ट्रिक्ट ने देखू या चू नोए बेबोकला खुन्यक योय मो न्याप यामा होमसुपु कस्टिकाट या का किंकांग यूनियन कैबिनेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान या अरुणाचल ने यूलिया मिजा गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पानाय फंग न्याप तक सा बिस्बेन ने जिजेप शोमकेट ली कु बिस्बेने जिजेप शुमकेते को कछुमा मुंसिजेन किंगकांग से हुस्का को मेंकु गवर्नरी यूनियन मिनिस्टर ने कापशे तो बदिप को वारा अरुणाचल डेवलपमेंट पंग ने किंगकांग को मेंकु यूनियन मिनिस्टर पर या गवर्नरी के वाई को लेजुन्या के पान्योर डिस्ट्रिक्ट ने नोबुक मा बेठेत हासिजे लम्सकेसे होम्सपुस डिस्ट्रिक्ट का या अमन ने कछुपों किंगकांग रो न्यापने रिपोर्ट या बिबिवेल या एसडीआरएफ से एनडीआरएफ नॉर्म्स ने मुंशीजन रिलीफ में ने कोटमें को रिपोर्ट न्याप या सेंट्रल गवर्नमेंट देखने अब चल को के पान्योर चोंग ने इस चंग डिस्ट्रिक्ट ने तो यमन में पंक्ति में नौ बबोक या जब होम्सपुर डिस्ट्रिक्ट खड़ा हेलीकॉप्टर यंगपुक में यावू या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बचोन कोला यूनियन मिनिस्टर पनी शिवराज सिंह चौहान से किरण रिजिजुई लबी ये खांत का चाहे यकरे या अरुणाचल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू आकाशवाणी मा यमन चेचे संभव रो डोनर मिनिस्टर ज्योतिरा द्वितीय एम सिंजाई तो नोबुक पंगन चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू पंगपोन मा करे बे लिया डोनर पंग मतो मुंशीजेन ककोट में कुरेट लब है लेना अक्रोप या चू हायुम ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर मिन ने गवर्नमेंट रेखा मा इलेक्शन बुक्चु कु मामा मिन सिविवेन है रोम तावंग डिस्ट्रिक्ट ने तो डिप्टी कमिश्नर नामगेल अंगमोई हुंपुम पॉलिटिकल पार्टी खोन्यक बस ट्विन प्याल्या मिजा लुच हिमवरो लेदा हमको फिर फिर कम शाम जा मिन्स विवेन है पंग ने मामा बूथ लेवल ऑफिसर से मामा एजेंडों से कम शाम को डिप्टी कमिश्नर ये पॉलिटिकल पार्टी दोनों यमन तब वारों से ही ना पासिगर हने अरुणाचल यूनिवर्सिटी कहाँ बे मा यंग बिल्ली लेलो रातुंग मा यकमिन ने मिजा अरुणाचल यूनिवर्सिटी याचु फाउंडेशन डे मिने प्रोग्राम तब हवाना याचुवा nyak vite ya kedong keda se se slom nyap tak lihat tak India se England ya England hana mija cricket 2020 kelihat tak don ya kerup ya cu yang bek wangko setuk doi muma tak tanah tajak lah India ike bang ke bebulia jasek ke sok sekuran tebhana wa India pangnawa Syria leari bili sok sini bol ya cu rok sok sekit ran tebebuah Sinap Saturday nap ya cu ya pengnyap adik ke dauna. FIFA World Cup minne yang ikhubub nuwa football down kejek-kejek te ya kelewtok ya cu mija Belgium country Senegal si ya gol mangsyap matas nua. Belgium ni kerum ya ma Senegal si gol kini terbukwa. Ya ma USA Bosnia Herzegovina country ya gol kinima tisna
round 16 ya chu USS e Belgium shi ya akso lota dana cha khobor ya chan le chan la amane se program ka thang la shi ke bang na lemlang bisai naba yonyen se ka thang mang la shi

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नुक्ते समाचार। अगर आप हमारे नुक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक, है ना दोस्तों। तो अब से बस कुछ ही देर में आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि इवनिंग ड्राइव लेकर हाजिर हो जाएंगे हम आप सभी के खिदमत में। आप कहीं चाहिएगा नहीं।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Attention! Party Hydro.

0: power station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: Attention! Pare Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: सुपीरियर हैंडलिंग, स्टाइलिश लुक। एक्सप्लोर मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। कम्स विद सुपरस्टार 9-inch स्मार्ट प्ले।

सुन बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर या आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को, आप सभी के अपनों तक। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अब आप आनंद उठा पाएंगे इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम के साथ। तो आज कुछ खास करते हैं दोस्तों। लेट मी सबसे पहले इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले दोस्तों मैं अपना इंट्रो दे दूं आप सभी को। जी हाँ, मैं पैसा हूं। जी हाँ, मैं पैसा हूं। मैं नमक की तरह हूं, जो खाने में स्वाद तो देता हूं और बहुत जरूरी भी हूं, मगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो हाई बीपी या अन्य कई बीमारियां दे देता हूं। मैं भगवान नहीं हूं, पर लोग मुझे भगवान से कम नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं पैसा हूं और पैसा हूं और पैसा ही हूं।

जी हाँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे भगवान से कम नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं पैसा हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ऊपर नहीं ले जा सकते। जी हाँ, आपको जहाँ जाना है आप जाओ, लेकिन आप लोग मुझे ऊपर लेके नहीं जा सकते। फिर भी आप सब मुझे भगवान मानते हैं। मरने के बाद आप मुझे ऊपर नहीं ले जा सकते, मगर जीते जी मैं आप सभी को बहुत ऊपर लेकर जा सकता हूँ। मैं नई नई रिलेशनशिप बनाता हूँ और मुझे पाकर अक्सर लोग अपने रिलेशनशिप, रिश्तेदारियां सब बिगाड़ देते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी देखो ना, लोग मुझे कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी वजह से लोग आपको कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना? तो मैं पैसा हूं और पैसा ही हूं। मैं शैतान हूं, लोग मेरी वजह से गुनाह करते हैं। मैं खुद शैतान हूं और लोग मेरी वजह से ही गुनाह करते हैं। पैसा पैसा और पैसा हूं मैं।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफो मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो चलो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

जी हाँ, पैसा फेंको तमाशा देखो, लेकिन मैं आपके पास जब तक हूं भरपूर इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अपने कल को सवार भी लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको ऊपर जवाब देना पड़े कि आपने मेरे वजह से क्या क्या गुनाह किया है। जब पूछे जाओगे तब आप क्या जवाब दोगे? आप तो बोलोगे कि हमने जीते जी पैसे को ही भगवान बना दिया था। तो आपको यहां पर तो पता है कि जिंदगी के लिए पैसा बेहद जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा आपके पास हूं तो आप उसका गलत इस्तेमाल करो। नहीं, अगर आपके पास मैं बहुत ज्यादा हूं तो आप मुझे उन लोगों के पास भेज दो जिनके पास मैं नहीं हूं। उन हाथों में आप मुझे दे दो जिनको मेरी बहुत जरूरी है। और एक अंतिम बात, मैं हर जगह मिल जाता हूं। मेरे तो आजकल इतने ठाट है कि मंदिर से लेकर मस्जिद तक और मस्जिद से लेके चर्च तक, और कुर्सी का खेल भी मेरे से ही होता है। नोट पर वोट मिलते हैं। जी हाँ, तो मैं हूं पैसा, पैसा हूं मैं, और गोल गोल पैसा मेरे पीछे दुनिया भागती है। यही है सच बात।

तो दोस्तों, आपने सुना इवनिंग ड्राइव में कि पैसा क्या बोलता है, वो खनकती हुई पैसों की आवाज जिसे हम और हमारे जैसे सभी लोग पाना तो बहुत चाहते हैं हम लोग, लेकिन एक लिमिट में ही हो तो ही अच्छा है। चलिए, इवनिंग ड्राइव के प्रोग्राम को यहीं संपन्न करते हैं। मिलते हैं बस कुछ ही देर में शाम की महफिल में। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

के साथ। वैसे हो सकता है कि इस वक्त आप अपने ड्यूटी करके ऑफिशियल कामकाज से निजात पाके इस वक्त अपने घर की ओर लौट रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप घर पे ही पहुंच चुके हो और शाम का वक्त हो चुका है। मुझे पता नहीं आपके शहर में कैसा मौसम है, हो सकता है भीषण गर्मी पड़ रही हो और कहीं पर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है दोस्तों। जी हाँ, तो जहां बारिश हो रही है तो वहां तो आनंद ही आनंद है, लोग आनंद का आनंद उठा रहे हैं, गर्मी से निजात पाकर रिमझिम फुहार से आनंद पा रहे हैं। लेकिन उनका क्या जिनके शहर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में आप जो है शायद रिलैक्स करने के मूड में है लेकिन गर्मी आपको रिलैक्स करने नहीं दे रही है। लेकिन हम वादा करते हैं कि हमारे जो गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के लिए, वो आपकी शाम को खास जरूर बना देगी, इसकी वादा हम जरूर करते हैं। तो शाम की महफिल को परफेक्ट एम्बियंस देने के लिए लेकर आ गए हैं हम बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। उम्मीद है आप सभी को बेहद पसंद आने को है। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ ही हमारी आज की शाम की महफिल का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आज के जो नजराने हमने पेश किए हैं आप सभी के लिए, हम शायद आपकी शाम को खास बनाने में कामयाब हुए हैं। एफएम बैंड के 100

3.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, अब आप स्पेशल प्रोग्राम के तहत सुन सकेंगे एक एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन यानी कि एक खास साक्षात्कार व्हाट्सएप अरुणाचल में। और आज के इस विशेष साक्षात्कार हम करेंगे पद्मश्री अवार्डी श्री तेची गोविंद जी के साथ।

0: करके सुबह सुबह करीब 10-11 बजे ऑफिस खोलने के बाद में एक मैडम ने कॉल करके बताया, टीचर गोविंद कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको पद्मश्री के लिए सिलेक्ट हो गया है आपका नाम। तो मैं विश्वास नहीं कर सका, मैडम इज इट ट्रू, आर यू सीरियसली टेलिंग,
1: विश्वास नहीं हो रहा,
0: विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ यस यस ईपीआर टीचर गोविंद देन योर पद्मश्री इज फॉर यू। तो बोला है देन थैंक यू मैम, मैंने बोला देन मैम बोला है तो आई एम टेलिंग यू नाउ बट डोंट डिस्क्लोज इट टू यू टू अदर्स टूडे ना बिकॉज टुमोरो इट विल बी अनाउंस, योर नेम विल बी अनाउंस टुमोरो 26 जनवरी।
1: तो आपने किसी को बताया नहीं?
0: तो मैंने किसी को भी बताया नहीं, ऐसे मैं सिर्फ
1: फैमिली को भी नहीं बताया,
0: नहीं फैमिली को भी नहीं बताया सिर्फ मैं खबर मिल गया मुझे उतना मुझे मालूम था। लेकिन उसी दिन 25 तारीख को अफ्टरनून में मनोज सिंह जो पीटीआई का रिपोर्टर है
1: जी जी,
0: उसने हमको कॉल करके गोविंद जी कॉन्ग्रेचुलेशन पद्मश्री अवार्ड के लिए। तो मैंने उनको पूछा आपको कैसे पता चला, अरे कैसे पता नहीं चलेगा, मैं तो पीटीआई का रिपोर्टर हूँ, मुझे मेरा तो होम मिनिस्ट्री में डायरेक्ट लिंक है, ऐसे बताया। तो तब तो ठीक है, लेकिन मुझे बताने के लिए मना किया था आज का दिन में। तो उन्होंने बोला तब एक आप वीडियो क्लिप बनाइए, 1-1.5 मिनट का एक वीडियो क्लिप बना के भेज दीजिए। तो मैं जस्ट मतलब सूरज ढलने वाला था, शाम हो रहा था, एक वीडियो क्लिप बना के कि एक हमारा कार्यकर्ता है वहां का वेस्ट बंगाल का ना संगठन मंत्री, उनको बोला कि आप हमको वीडियो बना दीजिए और भेजना है। उनको बता दिया मेरा पद्मश्री सिलेक्शन हो गया मेरा नाम, तो बना के भेज दिया। फिर मनोज सिंह उसी शाम को पूरा उसको वायरल कर दिया।
1: अच्छा
0: मैंने सोचा अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मैडम ने तो हमको मना किया था किसी को बताना नहीं है। ऐसा
1: तो ऐसे करके सबको पता चल गया,
0: पता चल गया उसी 25 को ही पता चल गया।
1: जी जी
0: जी वो वायरल हो गया ना, उन्होंने जो वीडियो क्लिप को वायरल कर दिया, मैंने तो उनको ही बना के भेज दिया था।
1: तो सर आपने ये इन्फॉर्मेशन जो ये न्यूज जो है पद्मश्री के लिए आई हैव बीन नॉमिनेटेड, ये सबसे पहला किसके साथ शेयर किया एंड हाउ वाज द रिएक्शन?
0: सबसे पहले तो क्योंकि मैं वहाँ प्रवास में था ना, अपना कार्यकर्ता को ही बताया, जो वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता मैंने बताया। वो मैंने वो भी नेक्स्ट मॉर्निंग लेकिन 25 को तो
1: जी जी
0: 25 को तो वो संगठन मंत्री को मालूम हो गया
1: जी,
0: क्योंकि उसने हमको वीडियो बना दिया ना। और नेक्स्ट डे तो 26 जनवरी, तो उसने पूरा असेंबली में क्योंकि वो था छात्रावास था, छात्रावास में बच्चों को अनाउंस करके बता दिया मेरे बारे में। अच्छा, कि ये अच्छा। सर को पद्मश्री अवार्ड आज का दिन में अनाउंस हो रहा है, दिया जा रहा है।
1: ओके, ओके।
0: बताया और फ्लैग होस्टिंग मैंने किया वहाँ।
1: ओके
0: वहाँ एक छात्रावास जो स्कूल है, साथ में स्कूल भी है और कन्या छात्रावास भी है। तो वहाँ उसी दिन का जो फ्लैग होस्टिंग मैंने कराया।
1: ओके सर जी, ओके सर। एंड हाउ अबाउट फैमिली सर, फैमिली को कब पता चला और हाउ वाज द रिएक्शन?
0: हाँ फैमिली को भी तभी उसी दिन ही मैंने बताया जी।
1: तो उन्होंने फैमिली
0: में इतना कोई एकदम एक्साइटमेंट तो नहीं
1: अच्छा
0: मेरे मुझे भी ज्यादा उतना एक्साइटमेंट तो
1: नहीं था
0: क्योंकि मैं तो काम कर रहा था कोई विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मैंने समाज सेवा तो कर रहा था
1: जी।
0: और मैं समाज सेवा तो स्कूल में पढ़ाई करते समय से मैं करते आया हूँ
1: जी, मैं उसी में आने वाला था। कब समाज सेवा का जो ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा
0: समाज सेवा मैं स्कूल में यजाली स्कूल में जब पढ़ रहा था तो हम लोग पूरा यजाली एरिया या सराउंडिंग विलेजेस में सोशल सर्विस कराते थे।
1: ओके
0: तो वहाँ हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन तब दैट वाज ड्यूरिंग 1977-78 तो हम गांव वालों को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में भी वो अवेयरनेस देते थे।
1: ओके
0: तो पानी उठाने का जो पहले तो नल का पानी नहीं था, वो पाइप वाला पानी नहीं था, हम लोग दूर जाके पानी को उठाना पड़ता था। तो पानी का जो सोर्स है जो जहां से पानी उठाता है बहुत गंदा होता है उसको हम लोग बस्ती में से जाके साफ कर देता था बरा कर देता था
1: दैट वाज वॉलंटरीली
0: वॉलंटरीली वॉलंटरी सर्विस माने स्टूडेंट्स एंड आई वाज गाइडिंग द स्टूडेंट बिकॉज आई वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल
1: ओके
0: तो मेरा लीडरशिप का समय में यजाली एरिया का सराउंडिंग विलेजेस में मैंने घूम घूम के ऐसे सोशल सर्विस कराया और एक बहुत डिफिकल्ट टेरेन में बस्ती वगैरह था उनको भी मैंने सजेस्ट किया कि ये आप लोग का तो बहुत हार्डशिप है यहाँ रहना बहुत हार्ड एरिया है आप लोग मैंने एक जगह दिखाया वहां जाके एक प्लेन एरिया है वहां आप लोग रीग्रुपिंग करके सेटल हो जाइए ना बता के गया उसके बाद तो मैं वापस जाके देखा नहीं लेकिन अभी मुझे लोग बताते हैं
1: जी
0: आपने बताया था रीग्रुपिंग के लिए हम लोगों ने वहां बैठ गया
1: okay.
0: ऐसे बताता है अभी लोग बताता है
1: तब
0: मेरा रिकॉल होता है रिकलेक्ट मैं तब करता हूँ मैंने बताया था मीटिंग में ऐसा होता है तो वही मतलब सोशल सर्विस तब से करते आए फिर जब नेहरू युवा केंद्र वगैरह का लगता था उसमें भी सोशल सर्विस का काम करता था तो नेहरू युवा केंद्र का एक मैं जब कॉलेज से पास आउट हो गया ना अगस्त में पास आउट हो गया तब कुछ समय हमको मिलता था तो एक लोध कोजी सर अभी वो गुजर गए वो कोऑर्डिनेटर था नेहरू युवा केंद्र उन्होंने मुझे बोला गोविंद एक टीम को तुमको लेके जाना है हिमाचल में एक टीम ऑफ 10 ना एस्कॉर्ट करके लेके जाना है तो मैंने हाँ बोल दिया वो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में ना मैं वो ले गया और हिमाचल में उनको ले गया एस्कॉर्ट करके वो भी समाज सेवा
1: ओके ओके सो हमने कहीं पे सुना था आपने गांव में नदी पार करवाया था लाइक ऐसा कुछ कहानी सुना था सर
0: नदी बारे में नदी क्या वो मतलब मेरा वो था एक लोगों को मदद करने की इच्छा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वो हम लोग का वो यजाली स्कूल का पास में एक बड़ी नदी है रंगा नदी
1: ओके
0: वो रंगा नदी उस पार से बस्ती वहां से आके नीचे वो है सस्पेंशन ब्रिज है
1: ओके
0: तो सस्पेंशन ब्रिज तक जाने के लिए लंबा रास्ता है तो मैं बेम्बू का एक नाव बना के ऐसे खेलता था तो खेलते खेलते कभी उस पार से आदमी इशारा करने से मैं उनको उन लोगों को पार करा देता था
1: अच्छा।
0: और कभी कभी ऐसे जब स्कूल छुट्टी होने से ना मैंने फ्री टाइम रिसेस का समय में वहां नाव में जाके चलाता था कोई वहां से अगर ऐसे पार करवाने के लिए बुलाएगा इशारा करेगा तो पार करा दूंगा तो मैं ऐसे लोगों को पार करा देता था
1: अच्छा इन रिटर्न कुछ मिलता था
0: मैं मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था फ्री सर्विस
1: ओके मतलब ऐसे हेल्प करने में अच्छा लगता था
0: जी अच्छा लगता था
1: ऑलराइट
0: क्योंकि उसमें मेरा हॉबी जैसा ना
1: जी
0: पानी में खेलना नाव चलाना बेम्बू का वो रेफ्ट बना के ना नाव बना के
1: ओके
0: ऐसा था
1: ओके
0: और स्कूल में रहते समय भी छुट्टी का दिन में संडे किसी का खेती में जाके काम कर देना और हमको खाना मिलने से हो गया और दारू अपो मिलने से हो गया ऐसा एक्चुअली में भी वेकेशन में मैं काम किया था फॉरेस्ट में ना एक्चुअली फॉरेस्ट में काम किया था उसमें संडे को छुट्टी मिलता था संडे को छुट्टी मिलने से हम खबर ले लेता था कि कल संडे का दिन को किसी का खेती में काम होगा क्या तो काम मिल जाता था मतलब वही
1: मतलब बचपन से ही विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन यू हैव बीन हेल्पिंग
0: उसमें भी किसी का खेती करा दिया हमको हजरा मिलेगा ना
1: जी
0: डेली वेजेस जो मिलेगा ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बस हमको खाना मिलने से हो गया और पीने को अपो मिलने से हो गया दारू
1: सर ये हो गया आपका चाइल्डहुड मेमोरीज हो गया सर नाउ कमिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट एज अ पद्मश्री अवार्डी सर बोलते हैं कि जैसे ग्रेट रिकॉग्निशन कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो तो आपके लिए सर क्या है Padmasri, how do you define Padmasri for yourself? What is Padmasri award to you?
0: मैं समझने लगा हूँ इस बिग अचीवमेंट
1: जी
0: तो मैं लोगों को बताता हूँ लोग हम

0: and I take it as a as an opportunity, as a challenge.
1: Okay, okay. ठीक है सर. ये जो अवार्ड मिला है सर, ये जो रिकॉग्निशन मिला है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे सर?
0: इसका क्रेडिट तो मैं भारत सरकार को ही देना चाहूंगा.
1: ओके.
0: और मैं ज्यादा समय सेवा जहां किया है कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, और यहां इस प्रांत में अरुणाचल विकास परिषद, मैं मतलब कहां से सिफारिश गया मालूम नहीं.
1: जी जी जी.
0: किसी ने तो हमको बताया नहीं, आपका नाम हमने वो कर दिया, सिफारिश दे दिया, रिकमेंड कर दिया.
1: हाँ.
0: तो राज्य सरकार, ये कल्याण आश्रम
1: जी,
0: और फाइनली भारत सरकार.
1: ऑलराइट. ठीक है सर, डिस्कशन को जारी करेंगे सर. थोड़ा सा हम एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाहते हैं सर.
0: अच्छा.
1: मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ सर आपको, आपको इसका वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर देना है सर.
0: ठीक.
1: आर यू रेडी सर?
0: ओके, आई विल ट्राई.
1: माय फर्स्ट क्वेश्चन सर.
0: ओके.
1: अरुणाचल प्रदेश इन वन वर्ड.
0: अरुणाचल प्रदेश, अर्लियर इट वॉज कॉल्ड नेफा, नॉट ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी.
1: ओके. वन वैल्यू दैट हैज गाइडेड यू योर एंटायर लाइफ. वन वैल्यू.
0: The truthfulness and simplicity.
1: Okay. Yeah. The person who has influenced you the most. सबसे ज्यादा influence किया आपको?
0: मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मानूंगा, because the non-violence and the truthfulness of his life.
1: One thing that makes you most proud of Arunachal Pradesh.
0: Arunachal's which makes Arunachal proud. I think it's Arunachal Pradesh, 26 tribes. Colorful tradition and culture.
1: All right, yeah. All right. Yeah. A place in Arunachal that is very close to your heart.
0: I would like to name Yajali, because Yajali has been the place where I did Kusum, my schooling,
1: right.
0: Up to class 10. 12 years I was there.
1: Mm-hmm. Your favorite traditional food?
0: I prefer boiled food. Yeah, with bamboo soup.
1: Okay.
0: Yeah, boiled food means all leafy vegetables.
1: Okay. Yeah. Next question, sir. Tradition or technology?
0: Tradition and technology. Tradition ke saath saath technology bhi aa gaya. To
1: both
0: aa gaya.
1: Diplomatic answer.
0: Yeah.
1: Last question, sir. Yeah. One dream for Arunachal in the next 25 years.
0: 25 years to bahut hota hai. To next 25 years mein I would like to see Arunachal developed Arunachal with a lot of infrastructure development, then a lot of flyovers. Mm-hmm. I could see at Nagpur and other places.
1: Yes, yes.
0: There are flyovers, above flyovers. So
1: yes.
0: I would like to see Arunachal Itanagar also grow like that.
1: Right, yeah. Right. So you want to see more development?
0: Yeah, yeah.
1: Okay.
0: And they are in the pipeline. Trains also will go up to Tawang and then Alo and all. So I would like to see all those developments in the next 25 years.
1: Okay, so Padma Shri Techi Govind sir is very optimistic about the future of Arunachal.
0: Yeah.
1: Okay, sir. That was all about the rapid fire round, sir. We'll continue with the question, sir.
0: Okay.
1: आपने सर कल्चर के बारे में बहुत काम किया है regarding indigenous faith also, sir.
0: जी जी.
1: Now, sir, my question is regarding the indigenous faith, the understanding among the people, especially the young, the youth. इसके बारे में आपका क्या राय है सर?
0: लोगों को समझ में नहीं आता है. मैंने कहा इन वन ऑफ द पॉडकास्ट, माय फादर ड्यूरिंग 60s, नो, माय फादर वाज एन इलिटरेट, ए प्रीस्ट, ही डिड नॉट हैव एक्सपोजर टू द आउटसाइड वर्ल्ड. ही यूज्ड टू टेल मी वी आर हिंदूज. तो मुझे देन आई वाज वंडरिंग, वो पिताजी ने क्यों हम लोग हिंदू है बोला होगा. देन आई कुड फाइंड आउट माई सेल्फ, वो हिंदू का मतलब उन्होंने इंडिजिनस को बोला होगा.
1: ओके.
0: सो इंडिजिनस मींस वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द सॉइल.
1: ओके.
0: दैट इज इंडिजिनस एंड द फेथ आर बिलीफ. वी आर नेचर वर्शिपर्स. दैट इज आर फेथ.
1: ओके. ओके सर, बातें तो हम बहुत करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम है सर. लास्ट में मेरा यही सवाल रहेगा सर, व्हाट इज योर मैसेज टू द कॉमन पीपल, द पब्लिक, स्पेशली द यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश?
0: मैं सबको समाज सेवी बनो नहीं बोल सकता हूँ, सब तो समाज सेवी तो नहीं बन सकेगा, लेकिन उतना तो

0: मैसेज मैं देना चाहूंगा, अच्छा नागरिक बने, देशभक्त बने, देश का सेवा करे, अपना अरुणाचल का सेवा करे, सभी वोट के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा।
1: थैंक यू सो मच सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इन सच ए शॉर्ट नोटिस आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया एंड वी हैड अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन टूडे। एंड आशा करते सर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही समाज सेवा करते रहे सो दैट अरुणाचल कैन फ्लोरिश मोर एंड मोर सर।
0: जरूर।
1: और राइट, जाते जाते हम आपको ये बताना चाहते हैं कि व्हाट्सअप अरुणाचल, जहां हम अरुणाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यूज, इश्यूज और इवेंट्स पर चर्चा करते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे स्पेशल प्रोग्राम व्हाट्सअप अरुणाचल, एन एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन विद पद्माश्री अवार्डी श्री तेची कुबिन सजे के साथ में FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर से। अब से बस कुछ ही देर में आप सब सुन सकेंगे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही DRM के 666 किलोहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, पेशे खिदमत है आज के कलाकार का ये सेगमेंट बस आप सभी के लिए। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम पेशे खिदमत करते हैं फिल्म जगत से जुड़ी हुई जाने माने कलाकार को, संगीतकार को, गायक कलाकार को, गीतकार को, और उनके सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स को आप तक पहुंचाते हैं। आज मैं एक ऐसी हीरोइन के बारे में, एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बातें करूंगी, उनके बारे में बात बताऊंगी, उनके सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स को आप तक पहुंचाऊंगी, जिनको शायद ही किसी परिचय की जरूरत हो। जी हाँ, 70 दशक तो बीत गया लेकिन आज भी वो जो है ग्लैमरस की दुनिया में सबसे खूबसूरत अभिनेत्री में से मानी जाती है। ना ही केवल

अपने एक्टिंग के लिए, अपने नृत्य के लिए, बल्कि उनके खूबसूरती की भी दाद दी जाती है. एंड शी इज नन अदर देन आवर बिलावड रेखा. जी हाँ, मशहूर रेखा जो है, उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, और उनके पिता तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और माता पुष्पावली तेलुगु अभिनेत्री रही. और जो है उनका वास्तविक नाम जो है रेखा का, भानु रेखा गणेशन है. जी हाँ, और इनकी जो फिल्म आई, उन्होंने फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में जो है सावन भादो जैसे फिल्मों से शिरकत की. बताया जाता है कि जब हिंदी सिनेमा में वो आई थी तो आपने काले रंग, जो कि आजकल के जमाने में इसे तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन उस जमाने में काले रंग के कारण कई फिल्म हस्तियों से उनको नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना भी करना पड़ा था दोस्तों. जी हाँ, और लेकिन इन्होंने कभी भी किसी भी चीज का जो है केयर नहीं किया, और सावन भादो के बाद हसीनों का देवता ऐलान, दोस्त और दुश्मन, जमीन आसमान, सजा गोरा और काला, गांव हमारा शहर तुम्हारा, एक बिचारा दो या रामपुर का लक्ष्मण, खून और पानी, लज्जा दिल है तुम्हारा भूत. इसके बाद जो है और भी इनकी जो फिल्में जो है दोस्तों, जो सुपर डुपर हिट फिल्म है, मुकद्दर का सिकंदर, घर, मिस्टर नटवर लाल, नमक हराम, खूबसूरत बहू रानी, झूठी, एक ही भूल, उमराव जान, खून भरी मांग, मांग भरो सजना, सिलसिला, जी हाँ, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मेरा पति सिर्फ मेरा है, मैडम मैक्स, इंसाफ की देवी, अमीरी गरीबी जैसी अनगिनत फिल्में की बातें करेंगे रेखा के बारे में. जल्दी से प्ले कर देती हूं मैं जो है उनके सुपर डुपर हिट फिल्म्स के गीत. जय माता.

दोस्तों वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कुछ सॉन्ग्स आप सभी के लिए प्ले करना चाहूंगी। जी हाँ दोस्तों, सावन भादो में उन्होंने नवीन निश्चल के साथ में काम किया और वहीं से उनके साथ उनका अफेयर्स हो गया जो कि ज्यादा दिन नहीं चली। 1976 में दो अनजाने उनके कैरियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई और यह पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ उनको काम करने का मौका मिला। 1978 में प्रदर्शित फिल्म घर रेखा के फिल्मी कैरियर के लिए एक अहम फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनका नाम नामांकित किया गया और कहा जाता है कि आज भी ये फिल्म को ना कोई भूल पाया है और ना ही इसके गीतों को, और यहीं से उनका जो है प्रेम संबंध विनोद मेहरा के साथ में हो जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने शादी भी कर ली थी लेकिन इनकी शादी बिल्कुल नहीं चली। इसी बीच अमिताभ बच्चन के साथ इनका प्यार हो जाता है यानी कि लव अफेयर्स शुरू हो जाता है। अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे लेकिन ये परवान चढ़ता है और सिलसिला के अंत होते होते, फिल्म के अंत होते होते जो है जय वादुरी की इंटरफेरेंस के वजह से वो खत्म भी हो जाता है। तो चलिए मैं एक गीत तो आप लोगों को सुनाना जरूर चाहूंगी क्योंकि मैंने सिलसिला का नाम लिया है तो सिलसिला फिल्म से ये गीत तो होनी ही चाहिए।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

जी हाँ दोस्तों, 1986 में बनी उमराव जान फिल्म ने धमाका ही कर दिया और इसके लिए इनको फिर से फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद 1988 में फिल्म खून भरी मांग रेखा की सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती है। राकेश रोशन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में प्रदर्शित फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में उन्होंने गैंगस्टर माया का किरदार निभाकर दर्शकों को वाहवाही लूटी। जी हाँ, इसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित की गई। रेखा ने अपने इस 40 साल के कैरियर में करीब 175 फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने आप को फिल्मी कैरियर में प्रमुख महिला किरदार के रूप में पेश किया। रेखा के नाम 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड्स शामिल है। 2010 में उन्हें भारत के चौथे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जी हाँ, एक और गीत मैं जल्दी से सुना देती हूँ, आप सभी को एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, रेखा का जीवन जो है वैसे फिल्मी करियर में तो बहुत ही सफल रही, लेकिन निजी जीवन कभी भी सुखी नहीं रही। उनके चाहे विनोद मेहरा से हो या फिर नबील निश्चल से या फिर अमिताभ बच्चन से, जो प्यार भरा लाइफ कभी भी अच्छा नहीं रहा। उन्होंने दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन एक ही साल के बाद मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली, जिसके कारण रेखा काफी टूट गई थी। लेकिन आज भी वो सिंदूर लगाती है, टीका लगाती है। लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन से उन्हें बहुत प्यार है और उसी के लिए, उन्हीं के लिए, उन्हीं के नाम के सिंदूर वो लगाती है और बिल्कुल बिंदास रहती है। और आज भी जब स्टेज पे उठती है दोस्तों, बस ठुमके जो लगाती है उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो हम तो चलते चलते रेखा के लिए बेस्ट विशेस यही देंगे और उनको और भी आगे हम फिल्मों में देखना चाहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस खूबसूरत गीत को हम जो है आप सभी को डेडिकेट करते हुए चलते हैं। और शाम के 7 बजे का वक्त रहेगा निशी समाचार का। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार
0: एक बार
1: लेकिन एक बार

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे निशी समाचार। अगर आप हमारे निशी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दिल से दिल तक बात पहुँचे, मिलते मिलते सनम। ओ
2: गीत संगीत,
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में,
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हिंदी फिल्मी गीतों के सेगमेंट पे, और इसे आप सभी के लिए पेश किया जा रहा है एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। तो चलिए दोस्तों आप सभी को सुना देती हूँ बेहतरीन नगमों को।

0: जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी फिल्मी गीतों के सेगमेंट में। और आप इसे सुन पा रहे हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब लोग जिस तरफ जा रहे हैं, अगर हम उस राह पर ना चल रहे हो तो हम गलत हैं। इस डर से हम भीड़ में साथ बहते ही जाते हैं, है ना। भले ही अंदर से हमें पता हो कि रास्ता गलत है ना। कभी कभी हिम्मत करके उल्टी दिशा में जो है चलना भी अच्छा होता है। रास्ता कठिन हो सकता है, पर हर कदम के साथ साफ और तकलीफ देह रास्ता जो है काफी आसान बन जाता है। और एक दिन हम चलते चलते बिल्कुल ऐसे करीब मंजिल की ओर पहुंच जाते हैं जो तकलीफदायक तो रही चलते चलते, लेकिन मंजिल मिलने के बाद बड़ा सुहावना होने लगता है। विपरीत दिशा में जाना, यानी कि जस्ट अपोजिट दिशा में जाना, जहां सब लोग नहीं जाते हैं। मैं कहना ये कहना चाहती हूं एक्चुअली में, कि लोग आपको बहुत सलाह देंगे, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसे चलो, तुम वैसे चलो, लेकिन आपको चलना अपने मन के कहे के अनुसार है। ये जरूरी नहीं कि आप भीड़ में ही सबके साथ चले चलो। कभी कभार अकेले सफर तय करना, सबसे अलग हट कर करना बेहतरीन होता है दोस्तों। जी हाँ, नई दिशा हो सकती है एक खुशनुमा दिशा। जिंदगी में अगर दिल कहे कि ये रास्ता मेरा नहीं, तो हिम्मत करना चाहिए, क्योंकि मंजिल वही होती है जहां सुकून मिलता है ना दोस्तों। और काम भी वही करना चाहिए जो आपके मन को भावे। यहां मैं एक छोटी सी बात कहना जरूर चाहूंगी और उसके बाद मैं आप सभी को ढेर सारी सॉन्ग्स भी सुनाऊंगी। अब जो हमारे देश में एक प्रचलन सा चलने लगा है, इज्जत के खातिर, कहीं इसमें हम गुम तो नहीं हो जा रहे हैं। आए दिन हम टीवी में, न्यूज में हमेशा जो है सुनते हैं, इसने इसको मार डाला, उसने उसको खत्म कर

दिया। इसने पहाड़ के ऊपर से अपने मंगेतर को धकेल दिया तो उसने अपने पति को मार डाला, तो उसने अपने बीवी को मार डाला, तो उसने अपने प्रेमिका को मार डाला, इसने अपने प्रेमी को मार डाला। ये क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचिएगा जरूर दोस्तों। हालांकि ये बात कितने कहनी चाहिए और कितना नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरी एक मन की बात है जो मैं अपने मन की बात को आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूं। मुझे ये कहना है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, भले ही आपके माँ बाप ने आपकी शादी तय कर दी हो या फिर आपने मंजूरी दे दी हो और दिल में किसी के ख्वाहिश है, तो आपको हिम्मत करके उन्हें बताना जरूरी है। ये नहीं कि इज्जत के खातिर आप खुद को कुर्बान कर दो या किसी की कुर्बानी दे दो, है ना। करें वही जो आपको मन भावे, और वही अपने जिंदगी का सवाल अगर है तो फिर आपको बहुत समय में इज्जत को ताक पे रख के वही करनी चाहिए जो आपका दिल कहता है। फिर भले ही आप समाज से लड़ लो या फिर गलत बातों पर क्यों ना हो अपने घर से ही लड़ लो। समाज हमसे है, हम समाज से नहीं है। तो मेरा कहना वही है कि जब हम एक चींटी को भी एक जान नहीं दे सकते हैं तो जान लेने वाले होते कौन हैं, है ना। तो एक हिम्मत करके कहने की अपनी इच्छा शक्ति को, कहने की अपनी ख्वाहिश को, कहने की ताकत रखिए, और जो मन आपको कहता है आप वही कीजिए, और अपने जिंदगी को हो सकता है विपरीत दिशा में चले आप, लेकिन जो आपके लाइफ के लिए बेटर है आप वही करें। ये ना हो कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को सुना देती हूँ कुछ बेहतरीन नगमे, एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारे आज की हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। दोस्तों, रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं और 8 बजते ही वक्त हो जाता है अपना गीत कार्यक्रम का।
1: श्रोता मित्रों, नमस्कार। कार्यक्रम अपना गीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपके रेडियो साथी गैर अतः। यह श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज। अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक में हम प्रकृति और हमारे पूर्वजों से जुड़ी कुछ बातें करना चाहेंगे, जो कहानियां एवं अनुभवों पर आधारित होंगे। और हाँ, बातों के बीच अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जनजातियों का गीत तो शामिल होंगे ही, क्योंकि ये कार्यक्रम है ही गीतों का। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं मिजुमिस्मी गीत से, जिसे गाया है बाफेमसो ताइंग ने।

लॉजिक होते हैं, मगर जरा पीछे मुड़ के पुराने जमाने में, खासकर हमारे अपने गांव के बारे में जब सोचती हूँ, तो देखती हूँ कि वे कैसे हर चीजों को नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ कर रखते थे और कितनी बारीकी से चीजों का आकलन करते थे, चीजों को नोटिस करते थे।

आप सुन रहे थे जमुना सीरम की आवाज में गालो गीत। श्रोता, अगर इस गीत का मतलब समझे तो समझ आता है कि कैसे अपना कैलेंडर नेचर के जरिए हमारे पूर्वज बनाते थे या जानते थे। पुराने जमाने के लोग हर सीजन को पेड़, पौधे या पक्षियों की आवाज से या उनकी दशा से पहचानते थे। कौन सा पेड़ कब किस सीजन में फूलते हैं, फलते हैं या किसके पत्ते किस समय में रंग बदलता है, कौन सी चिड़िया किस सीजन में चहकता है, कौन रोता है आदि।

अभी आप सुन रहे थे अनीता लिंगे की आवाज में ईदू गीत। श्रोता ट्यून किया है आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, और जिस पर कार्यक्रम चल रहा है अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये निशी गीत गोरा तारुप की आवाज में।

श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि भले ही जमाना टेक्नोलॉजी का हो, साइंस का हो, पर क्यों ना हम भी कुछ वक्त नेचर के साथ बिताएं? क्यों ना इन बड़े बड़ी इमारतों से दूर, हरियाली से भरे उन पहाड़ों में, उन गांवों में जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का दबदबा नहीं है, वहां जाए और उन पक्षियों को देखे और सुने ये वादियां हमसे क्या कहना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है।

जानू तेची की आवाज में आप सुन रहे थे तांगसा गीत, और अपना गीत कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं तुत्सा गीत सोमगाक सोंगतेंग की आवाज में।

0: श्रोता, इसी तुत्सा गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। एक और नए अंक के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत। नमस्कार श्रोता मित्रों, नमस्कार। कार्यक्रम अपना गीत में आप सभी
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अपना गीत कार्यक्रम को एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि रात्रि के ठीक 8:10 का वक्त रहेगा वेस्टर्न मेलोडीज का, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
0: टाइम नहीं।

0: ले लेते एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक।
1: अटेंशन, पारी हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भूले बिस्तरे गीतों के सेगमेंट में। भले ही ये भूले बिस्तरे गीत क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन होते तो है सदाबहार, जिन्हें हम अक्सर अपने होठों पर गुनगुनाना बेहद बेहद पसंद करते हैं। और ये हमेशा जो है हमारे जिंदगी के साथ साथ तो चलती है, और आज के जनरेशन भी इन गीतों को बहुत पसंद करते हैं। तभी तो इंस्टा और फेसबुक की जो है हैशटैग पर ये ट्रेंडिंग रील्स में से आते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों मैं ऐसे ही कुछ सदाबहार नगमों को लेकर आप सभी के खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कुछ शामें ऐसी होती है दोस्तों जो जिंदगी से गुजर तो जाती है, लेकिन दिल की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। उन शामों की खामोशी, अधूरी बातें और मीठी यादें बरसों बाद भी उसी एहसास के साथ लौट आती है। जी हां, तो आइए यादों के उस खूबसूरत शाम में एक बार फिर से खो जाते हैं। चलिए इस खूबसूरत सी गीत के साथ।

रात का सन्नाटा है, खिड़की से आती ठंडी हवा है और दिल में किसी की यादों का कारवा। सपनों की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है दोस्तों, कभी ये पल भर में हमें आसमान पर ले जाते हैं और कभी टूट कर हमें इस कदर तन्हा छोड़ जाते हैं कि बस जुबा पर एक ही बात आती है। जी हाँ, बस एक ही बार आती है ये बातें।

दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हम अपनी भूले बिसरे गीतों का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न करते हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स कि आपको हमारे आज के इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। जी हाँ दोस्तों, और चलते चलते दोस्तों वक्त हो चुका है कि अब आपसे हम अलविदा कहे, क्योंकि घड़ी बजाने को है बस 9:30। जी हाँ दोस्तों, हम ये दोस्तों उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आए होंगे। इन्हीं तरह के तमाम ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर हम आप सभी के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे कल सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा आप सभी के जिंदगी में ढेर सारे खुशियां लेकर आए। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और बहुत अपना ख्याल रखे, सेहतमंद रहे। और जी हाँ दोस्तों, अरुण एफएम को सुनना ना भूले, क्योंकि हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। चलते चलते आप यही याद रखिए, जो रिश्ते अचानक से आपके दुश्मन बन जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से आपसे नफरत कर रहे होते हैं। बस आपको पता इसलिए देर से चलता है क्योंकि वो किरदार अच्छा निभा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मंगल कामना करते हुए संचार निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की अपनी आरजे अपर्णा को रुखसत होने के दीजिए इजाजत, और आगे के कार्यक्रमों के लिए एफएम गोल्ड पर बने रहे। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।

0: copyright. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक

0: में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद हर्ष जी।
0: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है?
1: हर्ष जी देखिये, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाए। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है। क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती है और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के
0: जी,
1: उनको सब पर काम किया गया है और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
0: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
1: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया पर डोप मोर को, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते हैं बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉप मोर प्रो, प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
0: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आंकड़े क्या बताते हैं, अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है, वर्षा हो ना हो वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा?
1: तो हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत वर्षों से है, जिसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पोन्ड्स हैं, तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरिगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके

0: हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस वक्त, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड से उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशंस बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ एक इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है। तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कंपोनेंट है एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIP भी जिसको बोलते हैं।
1: जी
0: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी, उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ, और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेक डैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ, साथ में जो टेक्नोलॉजी है जैसे आपने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है, कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है,
1: जी
0: जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स हैं जिसमें अब मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके की इरिगेशन की जो नई चीजें नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में, कई जगह 1/4 पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर होगी, उत्पादकता बेहतर होगी। जो ड्राई लैंड एरिया जैसे कि राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
1: जी
0: जैसे आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, जो बड़े पॉन्ड थे या लेक से का जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और ये जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसिशन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी जहां बिजली की भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और
1: जी
0: उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी

0: आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहाँ किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है, इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर विशेष रूप से अगर कहें छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
1: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर डो मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है
0: जी।
1: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है, जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उसमें बड़े पैमाने पर। अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है, कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है
0: जी। और हरवीर जी, यहाँ ये भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: अक्यरकुत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of regional folk and light music, we bring you a Chakyar Kuta by Shri Margi Mathu and Party.
0: Shri Margi Mathu Koodiyattam ke agrani kalakaryon mein se ek hai. Koodiyattam Kerala ki prachin sanskrit rang
2: aur vyapakta ek saath milne par puri duniya ko labh hota hai.
3: Bharat Japan sambandh waqai बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सब

0: सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडारण को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ताओं के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई फैसलों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आवर्जन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए पश्चिम और मध्य भारत के कुछ भागों में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। और फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: भारत ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: श्री गोयल ने जापान के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी और उसके विविध मुक्त व्यापार समझौतों और पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति से संबंधित अन्य मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
4: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और

0: और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें।
2: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि सर्वमान्य कानूनी ढांचा का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। श्री हरीश ने कहा कि ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अभियोजन और प्रत्यर्पण को मजबूत करेगा और आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने, धन और हथियार प्राप्त करने से वंचित करेगा। अमरीका, इसराइल और अर्जेंटीना ने रणनीति के विरुद्ध मतदान किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लवुड में लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर समर्थन मिला। रूस द्वारा यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों में 21 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया आमने सामने। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I'm Abhineet Shukla with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth, holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announced energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. 21 people killed in Ukraine in massive drone and missile strikes by Russia. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
4: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं फ्रेंड्स भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है
3: इन हर एड्रेस Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate the vision into a concrete action. On the occasion, both the Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including energy, and economic security, pharmaceuticals, and AI. Prime Minister Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
4: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे
3: ब्रीफिंग मीडिया न्यू दिल्ली दिस इवनिंग फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सेड टुडेज एंगेजमेंट्स हैव यील्डेड गुड रिजल्ट्स इन एरियाज इंक्लूडिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी
5: The leaders reflected on the very strong foundation of our bilateral ties across multiple sectors, including trade and investment, economic security, defense, supply chain resilience, technology, innovation, and people-to-people exchanges. And both leaders acknowledged the role that our special strategic and global partnership plays insofar as peace, prosperity, and stability in the Indo-Pacific and even beyond is concerned.
3: India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, Both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. The two sides agreed to cooperate on the strategic stockpiling ecosystem, including sharing knowledge and experience on crude oil and petroleum product reserves, coordination with producing countries, and mechanisms for emergency response and market stabilization. This is Akashvani. You are listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. India's long-standing proposal for the Comprehensive Convention on International Terrorism has received renewed support at the United Nations General Assembly. The ninth review of the UN Global Counterterrorism Strategy, adopted by 140 votes, has urged the member states to make every effort to finalize the convention proposed by India over three decades ago. Addressing the UN General Assembly, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said the absence of a universally agreed legal framework weakens global counterterrorism efforts. He stressed that there should be no double standards in tackling terrorism and called for holding perpetrators, financiers and sponsors accountable.
6: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause,